0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि, तद अनुसार 26 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 58 मिनट हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों की प्रतीक्षा।

0: संरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement.

0: सेंटर्स।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
2: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये मात्र वंदना। रचना है रामप्रसाद बिस्मिल की।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आपने सुनी। लीजिए अर्चना कार्यक्रम में अब सुनिए जानी बाबू और साथियों की आवाजों में वाक्य है करबला।

जानी बाबू और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये वाक्य करबला सुना। अर्चना कार्यक्रम में एक बार फिर से सुनिए जानी बाबू और साथियों की आवाज़ों में वाक्य करबला।

जानी बाबू और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने वाक्या करवला सुना, और आइए अर्चना कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मजीद शोला और साथियों की आवाज़ों में छोटा मजीद शोला और साथियों की आवाज़ों में कतील उस्मानी का कलाम।

छोटा मजीद शोला और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये शहीदी कलाम सुना। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7 आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह 7:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। और सुबह 7:45 पर सुनिएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा का धारावाहिक वाचन।

सुबह 8:15 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनेंगे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, और सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे रूपक झांसी की रानी अमर बलिदानी। सुबह 10:05 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों का कारवां। सुबह 10:20 पर सुनिएगा काव्य गोष्ठी। सुबह 10:40 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11:00 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे। शाम 6:30 पर सुनेगा सदाबहार फिल्मी नगमे, और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। हिंदी में समाचार शाम 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और शाम 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:20 पर सुनेगा बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और रात्रि 8:20 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी, और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं सम्पन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अनारकली फिल्म से ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत श्री रामचंद्र का।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भूले बिसरे की हित, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की, अल्फाज शकील बदायूनी के, संगीत नौशाद का।

मुगले आजम फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ को सुना और आइए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के आखिर में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ती फिल्म से ये गीत। अल्फाज हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने दोस्ती फिल्म से ये गीत सुना। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

समन्वय केन्द्रे दशम शीर्षस्तरीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादक द्रव्य नियंत्रण अभिकरण द्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीय मंत्रालयानां राज्य सर्वकाराणां

0: योजना प्रतिवेदनं च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योगमंत्री पीयूष गोयल अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धि वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयल अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधि अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधि वर्तते। अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यकशुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इंधनस्य आपूर्ति विषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबंधनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलित स्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकंपयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकंपग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओ, उदय प्रताप जी की गजल है कि ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। दोस्तों, मुझसे ना पूछो मेरी मंजिल का पता, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा, और सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा। श्रोताओ, इस गजल में शायर ने इंसानी जिंदगी की ख्वाहिशों और फिर उसके बाद उन ख्वाहिशों की निस्सारता का जिक्र किया है और ये बताया है कि मंजिल कुछ और नहीं होती, आपका तय किया हुआ रास्ता आपको आपकी मंजिल का पता देता है। साथ ही एक बहुत खूबसूरत संदेश दिया है कि दीपावली हमेशा अमावस की रात को पड़ती है, लेकिन जब इंसान एक दीपक से दूसरा दीपक जलाता है तो वो अमावस की रात प्रकाश पर्व का पर्याय बन जाती है। और जीवन में जब मनुष्य सत्य के आग्रह पर सत्य के लिए ही जीना चाहता है, हक पर चलना चाहता है, तो उसे जीवन में महासंग्राम से गुजरना पड़ता है और सच्चाई के लिए यही लड़ाई करबला बन जाती है। श्रोताओं, करबला का वाक्या तो हम सब ने सुना है। करबला मानव इतिहास की एक ऐसी जंग जो हक यानी सत्य और बातिल यानी असत्य के बीच लड़ी गई थी। ये जंग पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे حضرت

0: हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। कार्यक्रम में आज का विषय है उन्नत पशु आहार की जानकारी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीलेश साह।
1: खुद अपने घर पर पशु आहार तैयार कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के आहार घटक आते हैं, उनका समावेश करके आप पशु आहार तैयार कर लें, या फिर बाजार में अलग अलग अच्छी कंपनियों के भी पशु आहार उपलब्ध रहते हैं, वो भी आप सीधे पशुओं को खिला सकते हैं। और जहां तक आप अगर घर पे तैयार करना है तो उसका सूत्र क्या रहेगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम पशु आहार तैयार करते हैं तो इसमें हमें तीन घटक मुख्यतः रहते हैं। एक तो रहता है अनाज, अनाज या ग्रेन्स जिनको बोलते हैं, जिसका उदाहरण है ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल आदि। दूसरा घटक रहता है खली का। खली से आशय क्या है कि जैसे कि आप लोग जिसको हम केक भी बोलते हैं, कि जिसके अंतर्गत सोयाबीन खली, मूंगफली की खली, कपास की खली, सूरजमुखी की खली, अलग अलग प्रकार की खली आती है, ये दूसरा घटक हो गया। और तीसरा घटक हो गया अनाज के सह उत्पाद। अनाज के सह उत्पाद का उदाहरण क्या है, जैसे कि चुनी है, चापड़ है, चावल का छिलका है, चावल का पालिश है, तो ये अनाज सह उत्पाद होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जब भी हम घर में आहार तैयार करते हैं तो हमको ये तीनों प्रकार की श्रेणियों में से आहार घटकों का चयन करना चाहिए। कुछ लोग केवल खली खली खिला देते हैं तो उससे लागत बढ़ जाती है आहार की। कुछ लोग केवल चापड़ अकेला खिलाते हैं तो उसकी पोषक क्षमता इतनी नहीं रहती कि अधिक से अधिक दूध मिले। तो जो मैंने तीन आहार घटक बताए हैं, इनको मिला के आपको पशु आहार तैयार करना है। तो इसका क्या अनुपात है, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जब अगर आपको 100 किलो पशु आहार तैयार करना है तो उसमें आप मान के चलिएगा कि 1 किलो तो आपको नमक मिलाना पड़ेगा, 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिलाना पड़ेगा, और जो बाकी का 97 किलो है उसमें 1/3 आप मक्का या अनाज का रखेंगे, 1/3 खली का रखेंगे, और 1/3 हिस्सा चुनी चापड़ या धान के छिलके का रखेंगे। तो तीनों आहार की श्रेणियों में से जब आप समान अनुपात में मिलाएंगे 100 किलो में, और उसमें लगभग 2 किलो खनिज मिश्रण और 1 किलो नमक मिलाएंगे, तो ऐसे आपको करीब 100 किलो आहार तैयार हो जाएगा। अब इसको खिलाना कितना

0: तो सामान्य तौर पर एक सूत्र होता है कि पशु के रख रखाव के लिए हमको 1.5 से 2 किलो पशु आहार लगता है और इसके साथ ही 0.5 किलो पशु आहार प्रति लीटर दूध के हिसाब से। तो इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यदि कोई पशु 6 लीटर दूध दे रहा है तो दुग्ध उत्पादन के लिए 0.5 किलो आहार प्रति लीटर दूध के हिसाब से 3 किलो आहार तो उसके दुग्ध उत्पादन के लिए लगेगा और लगभग 1.5 से 2 किलो आहार उसके रख रखाव के लिए लगेगा। इस प्रकार से अगर कोई 3 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 4.5 से 5 किलो पशु आहार आपको खिलाना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि अभी शासन ने एक ऐप तैयार किया है जिसको हम बोलते हैं गोरस ऐप। तो इस ऐप में क्या है कि पशुओं की विभिन्न अवस्था के अनुसार और विभिन्न अवस्थाओं में उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार ये ऐप आपको मार्गदर्शन देता है कि आपको हरा चारा कितना खिलाना है, दाना कितना खिलाना है और जो आहार के विभिन्न घटक हैं उनको कितना मिलाना है। तो आप लोग इस ऐप का जरूर उपयोग कीजिएगा। गूगल के प्ले स्टोर पर जब आप गोरस ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें वो कुछ आधारभूत जानकारी लेने के पश्चात आपको बताने की स्थिति में रहता है कि आदर्श स्थिति में अधिक से अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को कितना खिलाना है। तो इस तरीके से आप गोरस ऐप के माध्यम से मार्गदर्शन ले सकते हैं, बाजार से रेडीमेड पशु आहार जो तैयार रहता है वो खिला सकते हैं, इससे आप अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं।
1: कार्यक्रम कृषि संकेत अभी आप सुन रहे थे।
2: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे, बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
3: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में

0: नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो, आधी शताब्दी बीत गई है पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आज़ादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आज़ादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, तो जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए, और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जननायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था की केंद्र माँ शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सकें। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि
3: आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक चीज नहीं लगाए मेरे भाई हमारे।

0: कहते थे चार फूट, मतलब खेत में चार फूट पे चार चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन पिर गए धान तो धान ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोध ही नहीं हुआ, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, मतलब ये भी है कि फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में आकर मूंगफली लगा रहे हैं, अब यहाँ पे शुरू हुआ अच्छा, इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो। जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूं मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्री बेस्ड फॉरेस्ट, एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। चार पांच चीज करो मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते थे चार फूट।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगरमालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के महदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। मनचाहे गीत इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में कुलवंत जानी का लिखा गीत संधि, संगीत सोनिक ओमी का। फिल्म का नाम है जुल्म का बदला और इस गीत को पसंद किया है गोपालगंज से संदीप रोहताश ने, भूट चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह, वंशराज सिंह, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया, ताहिरा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर आशा भोसले की आवाज़ में जुल्म का बदला फिल्म से ये गीत।

राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा, निवांश शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं सनम बेवफा फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना सावन कुमार की, संगीत महेश किशोर का।

श्रोताओं, कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। अतः 28 जून दिन रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक अवश्य पिलवाएं। सूचना समाप्त हुई।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: कार्यक्रम अनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये कव्वाली। फिल्म परदेश से ये कव्वाली, आवाजें अलका याग्निक, उदित नारायण, साबरी प्रदर्शकी, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत नदीम श्रवण का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। लगान पड़रिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, छटिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्बू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, बिहार भवन दिल्ली से सरफुद्दीन कुटरिया, वलाउली कुटरिया, भूट चौराहा पेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। इसी कव्वाली को पसंद किया है कोजागिरी कॉलोनी कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे, मानसी मालोदे ने। मारहटा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनवाज शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल खान अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर परदेश फिल्म से ये कव्वाली।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग का धारावाहिक वाचन।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना विदुषी डॉक्टर बेसेंट के होम रूल के तेजस्वी आंदोलन ने उसका स्पर्श अवश्य किया था, लेकिन कहना होगा कि किसानों के जीवन में शिक्षित समाज का और स्वयं सेवकों का सच्चा प्रवेश तो इसी लड़ाई से हुआ। सेवक पाटीदारों के जीवन में ओतप्रोत हो गए। स्वयं सेवकों को इस लड़ाई में अपने क्षेत्र की मर्यादाओं का पता चला, इससे उनकी त्याग शक्ति बढ़ी। इस लड़ाई में वल्लभ भाई ने अपने आप को पहचाना। ये एक ही कोई ऐसा वैसा परिणाम नहीं है, इसे हम पिछले साल संकट निवारण के समय और इस साल बारडोली में देख चुके हैं। इससे गुजरात के लोक जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह उत्पन्न हुआ। पाटीदारों को अपनी शक्ति का जो ज्ञान हुआ उसे वो कभी नहीं भूले। सब कोई समझ गए कि जनता की मुक्ति का आधार स्वयं जनता पर, उसकी त्याग शक्ति पर है। सत्याग्रह ने खेड़ा के द्वारा गुजरात में अपनी जड़ जमा ली। यद्यपि लड़ाई के अंत से

मैं प्रसन्न ना हो सका तो भी खेड़ा की जनता में उत्साह था, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी शक्ति के अनुपात में उसे सब कुछ मिल गया और भविष्य में राज्य की ओर से होने वाले कष्टों के निवारण का मार्ग उसके हाथ लग गया है। उसके उत्साह के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त था, किंतु खेड़ा की जनता सत्याग्रह का स्वरूप पूरी तरह समझ नहीं सकी थी। और अब इससे आगे, जिन दिनों खेड़ा का आंदोलन चल रहा था उन दिनों यूरोप का महायुद्ध भी जारी ही था। वॉयसराय ने उसके सिलसिले में नेताओं को दिल्ली बुलाया था। मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं भी उसमें हाजिर हूं। मैं बता चुका हूं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मेरी मित्रता थी। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और मैं दिल्ली गया, किंतु इस सभा में सम्मिलित होते समय मेरे मन में एक संकोच था। मुख्य कारण तो ये था कि इस सभा में अली भाइयों को, लोकमान्य को और दूसरे नेताओं को निमंत्रित नहीं किया गया था। उस समय अली भाई जेल में थे, उनसे मैं एक दो बार ही मिला था। उनकी सेवा वृत्ति और बहादुरी की सराहना सब कोई करते थे। हकीम साहब के संपर्क में मैं नहीं आया। स्वर्गीय आचार्य रुद्र और दीन बंधु एंड्रयूज के मुंह से उनकी प्रशंसा सुनी थी। कलकत्ते में हुई मुस्लिम लीग की बैठक के समय शोएब कुरैशी और बैरिस्टर ख्वाजा से मेरी जान पहचान हुई थी। डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर अब्दुल रहमान के साथ भी जान पहचान हो चुकी थी। मैं सज्जन मुसलमानों की संगति के अवसर ढूंढता रहता था और जो पवित्र तथा देशभक्त माने जाते थे उनसे जान पहचान करके उनकी भावनाओं को जानने की तीव्र इच्छा मुझ में रहती थी। इसलिए वे अपने समाज में मुझे जहां कहीं भी ले जाते वहां बिना किसी आनाकानी के मैं चला जाता था। इस बात को तो मैं दक्षिण अफ्रीका में ही समझ चुका था कि हिंदू मुसलमानों के बीच सच्चा मित्र भाव नहीं है। मैं वहां ऐसे एक भी उपाय को हाथ से जाने ना देता था जिससे दोनों के बीच अनबन दूर हो। झूठी खुशामद करके अथवा स्वाभिमान खोकर उनको अथवा किसी और को रिझाना मेरे स्वभाव में ना था। लेकिन वहीं से मेरे दिल में ये बात जमी हुई थी कि मेरी अहिंसा की कसौटी और उसका विशाल प्रयोग इस एकता के सिलसिले में ही होगा। आज भी मेरी ये राय कायम है। ईश्वर प्रतिक्षण मुझे कसौटी पर कस रहा है, मेरा प्रयोग चालू ही है। इस प्रकार के विचार लेकर मैं बंबई बंदर पर उतरा था। इसलिए मुझे इन दोनों भाइयों से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमारा स्नेह बढ़ता गया। हमारी जान पहचान होने के बाद तुरंत ही अली भाइयों को सरकार ने जीते जी दफना दिया। मोहम्मद अली को जब इजाजत मिलती तब वे बैतूल या छिंदवाड़ा जेल से मुझे लंबे लंबे पत्र लिखा करते थे। मैंने उनसे मिलने की इजाजत सरकार से मांगी थी पर वो मिल ना सकी। अली भाइयों की नजरबंदी के बाद मुसलमान भाई मुझे कलकत्ता मुस्लिम लीग की बैठक में लेवा ले गए थे। वहां मुझसे बोलने को कहा गया। मैं बोला। मैंने मुसलमानों को समझाया कि अली भाइयों को छुड़ाना उनका धर्म है। इसके बाद वे मुझे अलीगढ़ कॉलेज में भी ले गए थे। वहां मैंने मुसलमानों को देश के लिए फकीरी अख्तियार करने की दावत दी। अली भाइयों को छुड़ाने के लिए मैंने सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। उसके निमित्त से इन भाइयों की खिलाफत संबंधी हलचल का अध्ययन किया, मुसलमानों के साथ चर्चाएं की। मुझे लगा कि अगर मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र बनना चाहता हूं तो मुझे अली भाइयों को छुड़ाने में और खिलाफत के प्रश्न को न्यायपूर्वक सुलझाने में पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफत का सवाल मेरे लिए सरल था। मुझे उसके स्वतंत्र गुण दोष देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि अगर उसके संबंध में मुसलमानों की मांग नीति विरुद्ध ना हो तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। धर्म के प्रश्न में श्रद्धा सर्वोपरि होती है। यदि एक ही वस्तु के प्रति सबकी एक सी श्रद्धा हो तो संसार में एक ही धर्म रह जाए। मुझे मुसलमानों की खिलाफत संबंधी मांग नीति विरुद्ध प्रतीत नहीं हुई। यही नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज ने इस मांग को स्वीकार किया था। इसलिए मुझे तो उनसे वचन का पालन करवाने का भी प्रयत्न करना था। वचन ऐसे स्पष्ट शब्दों में था, उनके मर्यादित मांग के गुण दोषों को जांचने का काम केवल अपनी अंतरात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही करना था। तो अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, अतः 28 जून दिन रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक अवश्य पिलवाएं। सूचना समाप्त हुई।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय

0: मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है, वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम लोक संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं संतोष सिंह परमार का गाया ये पारंपरिक गीत

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनिए नंदराम पटेल और साथियों का गाया ये लोक भजन

नंदराम पटेल और साथियों का गाया ये लोक भजन अभी आपने सुना। और आइए कार्यक्रम लोक संगीत के आखिर में सुनते हैं माखनलाल खेरेवाले का गाया कि गाई ये चेतावनी।

0: बुंदेली गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी सागर से अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। लीजिए आप सुनिए रूपक, झांसी की रानी अमर बलिदानी। स्थल ध्वनि अंकन है इला शंकर गुहा का, आलेख और प्रस्तुति है डॉक्टर लीलाधर मंडलोई की। तो आइए सुनिए रूपक झांसी की रानी अमर बलिदानी का पुनः प्रसारण।
1: ये आकाशवाणी है। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में जिन देशवासियों ने अपना बलिदान दिया है उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणी है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक विशेष रूपक, झांसी की रानी अमर बलिदानी। रूपक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं लीलाधर मंडलोई। आइए ये रूपक सुने, झांसी की रानी अमर बलिदानी।
2: पहले सुमरो लक्ष्मी जूखा कुल देवी जो भई सहाय, दूजे गण

0: ये कथा भारतीय इतिहास की उस शूरवीर बाला की है जिसने हिंदुस्तान की आजादी का सपना देखा।
1: उसके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। प्यार से उसे मनु और छबीली भी कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के भाई चिमाजी अप्पा के आश्रित थे।
0: 1817-18 में अंग्रेजों ने पेशवाई समाप्त कर दी, अतः मोरोपंत तथा उनकी पत्नी भागीरथी चिमाजी अप्पा के साथ काशी चले आए। वहीं मनु ने जन्म लिया।
1: मनु की जन्मतिथि को लेकर इतिहासकार एकमत नहीं है। पारसनीस के अनुसार उनका जन्म कार्तिक बदी 14 संवत 1891 तदनुसार 19 नवंबर 1835 है।
0: किंतु मनु के समकालीन और प्रसिद्ध किताब मांझा प्रवास के लेखक विष्णु गोड से उल्लेख करते हैं कि झांसी नरेश गंगाधर राव से उनका विवाह 1842 में हुआ। तब मनु की उम्र लगभग 11-12 वर्ष थी। इस हिसाब से उसका जन्म 1830 के आसपास बैठता है।
1: विष्णु गोड से मांझा प्रवास में लिखते हैं,
2: शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो दिनों दिन अधिकाधिक सतेज होती चली। लड़की का रंग गोरा था, चेहरा लंबा, सीधी नाक, ऊंचा ललाट और आंखें कमल की तरह विशाल थीं। घर में कोई स्त्री न होने के कारण उसका खाना पीना, खेलना कूदना होमशाला में अथवा श्रीमंत नाना साहब के साथ ही होता था। छबीली में बचपन से ही पुरुषों के खेल खेलने की आदत पड़ गई थी।
3: मनु, इस तरह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो बेटी?
4: खेलने।
3: कौन सा खेल?

0: नहीं, कई खेल हैं। तीरंदाजी, बंदूक चलाना, तलवार चलाना और घुड़सवारी।
1: तुम्हारे साथ में और कौन कौन है?
0: नाना साहब भी हैं और तात्या भाऊ।
1: लेकिन बेटी, ये सब सीखकर तुम क्या करोगी?
0: मैं भी पुरुषों की तरह वीर और बहादुर बनूंगी।
2: इस तरह राजसी ठाट और सुखों में पली मनु 11-12 साल में ही पहाड़ सी दिखने लगी। तभी झांसी नरेश गंगाधर राव ने मनु से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे पराश्रित पिता मोरोपंत ने स्वीकार कर लिया।
3: मनु गंगाधर विवाह झांसी के गणेश मंदिर में वैशाख संवत 1842 में संपन्न हुआ। उनका नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया।
2: सन 1851 में लक्ष्मीबाई के जीवन में स्निग्ध चांदनी छिटकी। उन्हें पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ,
3: किंतु मात्र 3 माह बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट लुप्त हो गई। पुत्र उनसे रूठ गया। इस असीम दुख से वो उबर भी न सकी थी कि एक और वज्रपात हुआ। पति गंगाधर राव 21 नवंबर 1853 को दिवंगत हो गए।
2: इतनी कम उम्र में रानी अंधकार से घिर उठी, फिर भी उन्होंने अबला नारी की छवि को ध्वस्त कर संघर्षों का पथ चुना।
3: अपनी आंखें बंद करने के पूर्व गंगाधर राव ने अपने घराने के वासुदेव नेवालकर के 5 वर्षीय पुत्र आनंद राव को दत्तक बनाया। ये कार्यवाही मेजर एलिस और मेजर मार्टिन की उपस्थिति में हुई। बालक का नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा गया।
2: किंतु दत्तक पुत्र स्वीकार न करने की नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तर्कों द्वारा अपने अनुकूल बनाते हुए गवर्नर जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र की मान्यता देने से इनकार कर दिया।
3: डलहौजी ने झांसी को तुरंत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का आदेश जारी कर दिया। रानी को उसके पति की निजी संपत्ति से वंचित कर दिया गया।
2: रानी के मन में बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति घृणा के भाव अंकुरित हो उठे थे। उस पर अंग्रेजों के इस व्यवहार ने उन्हें गहरे तक आक्रोश से भर दिया। तभी मेजर एलिस लॉर्ड डलहौजी के पत्र के साथ दीवाने खास में उपस्थित हुआ।
4: लक्ष्मीबाई, हमारा गवर्नर जनरल आपके वास्ते ये लेटर भेजा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट झांसी को अपने अंडर में करने का ऑर्डर दिया है। आपको ये फोर्ट छोड़ने को मांगता।
5: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।
3: दामोदर राव को दत्तक पुत्र की मान्यता दिलाने के पक्ष में रानी ने बार बार प्रतिवेदन दिए, लंदन तक अपीलें की, किंतु अंग्रेज सरकार ने एक न मानी। अंततः रानी से झांसी का राज्य छीन लिया गया और उन्हें नगर के महल में रहने को कहा गया।
2: अंग्रेज उत्तर निर्मम बनते गए। उन्होंने विधवा रानी को काशी जाकर अपने बाल उतरवाने की अनुमति नहीं दी। हद तो तब हुई जब अंग्रेजों ने गंगाधर राव द्वारा लक्ष्मी मंदिर के रखरखाव के लिए दिए गए गांव को जब्त कर लिया। छावनी में गोमांस आरंभ हो गया। इन कुकृत्यों ने न सिर्फ रानी बल्कि झांसी की जनता में विद्रोह की जमीन पुख्ता कर दी।
6: इते

0: इस दौरान यही माहौल अवध, रोहिलखंड, बंगाल, दिल्ली तथा बिहार में भी था।
1: इन विद्रोहों के मूल में था अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़। मसलन पुश्तैनी धंधों का क्रमशः खात्मा, चुंगी वसूली, भूमि बंदोबस्त बिल, अकाल और बेकारी।
0: गाय व सुअर की चर्बी के प्रयोग की खबरें जब फैली तो उनके निराकरण का अंग्रेजों ने कोई प्रयास नहीं किया। कंपनी सरकार जन भावनाओं के प्रति उदासीन तो थी ही, प्रायः उन्हें ठेस पहुंचाने वाले कार्य भी कर रही थी। इसका जो परिणाम होना था वही हुआ।
1: अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया वीरवर मंगल पांडे ने। तारीख थी 29 मार्च 1857। बाद में ये आग तेजी से देश के अन्य भागों में भी फैलने लगी।
0: विद्रोह का प्रमुख रूप से संचालन कर रहे थे नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, कानपुर में सेनापति टीका सिंह और ज्वाला सिंह, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और रोहिलखंड में बखत खां आदि।
1: मेरठ, अम्बाला, दिल्ली, कानपुर और इलाहाबाद में विप्लवों की जो गरज उठी उससे झांसी भी उत्वेलित हो उठी।
0: सामरिक तैयारियां आरंभ हो गईं और पुराने हथियारों की जंग छूटते ही 1 जून 1857 से झांसी में क्रांति का घटना चक्र आरंभ हुआ और 5 जून को
2: झांसी के इस विद्रोह की बागडोर संभाल रहे थे झुरू कुंवर, लक्ष्मण राव, खुदाबख्श और असान अली। झोकनबाग में उन्होंने अंग्रेजों के रक्त की नदियां बहा दी और छावनी स्थित स्टार फोर्ट, तोपखाना और खजाने पर अपना अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों के पास रानी की 2 तोपें थी जिसमें एक थी प्रसिद्ध कड़क बिजली। 6 जून को खुला विद्रोह हुआ। कैप्टन बर्जेस, गार्डन और स्कीन सहित अनेक अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए। क्रांतिकारियों ने इस मौके पर खास तौर पर कोठी, तहसील व अन्य सरकारी कार्यालयों में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज जलाकर राख कर दिए।

0: स्वतंत्रता की इस आरंभिक चिंगारी में रानी की वैसे तो कोई प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई नहीं देती थी, किंतु उनका मौन समर्थन क्रांतिकारियों के साथ अवश्य था।
1: इस विद्रोह में रानी की तोपें और विश्वास पात्र अनुचर थे। भीतर ही भीतर वो अंग्रेजी नीतियों से त्रस्त थी, किंतु कमजोर रणनीति अख्तियार नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुलकर सामने नहीं आई।
0: इस समय रानी के व्यक्तित्व के मानवीय और राजनैतिक पहलू सामने आए। उन्होंने अपने महल में न केवल अंग्रेज परिवारों को शरण दी, बल्कि उन्हें 2 दिनों तक भोजन भी कराया।
1: अंग्रेज उन पर विश्वास कर सके, इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु करहरा के 100 टोपीदार बंदूकधारी किले में भेजे।
0: रानी ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। 11 जून को विप्लवी रानी से 1,00,000 रूपये लेकर दिल्ली रवाना हुए। झुरू कुंवर, श्याम चौधरी, मोरो बलवंत, लालू बख्शी, गोसाई गणपत गिरी, जवाहर सिंह और केरुआ के पवारों सहित एक जन प्रतिनिधि मंडल रानी के पास पहुंचा और झांसी की बागडोर संभालने की प्रार्थना की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली।
1: और तब समूची झांसी इस नारे से गूंज उठी। रानी न केवल बहादुर थी, बल्कि कूटनीति में भी अंग्रेजों से कम न थी। इसी कूटनीति के अंतर्गत उन्होंने अंग्रेजों को विश्वास में रखने का नाटक रचा। 12 और 14 जून को रानी ने सागर के कमिश्नर इरिस्किन को पत्र लिखे, जिसमें झोखन बाग कांड में अंग्रेजों की सहायता न कर पाने की अपनी मजबूरी का जिक्र किया।
0: उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनता के दबाव में और अराजकतावादी तत्वों से झांसी को बचाने के लिए उन्होंने फिलहाल शासन संभाल लिया है।
1: इरिस्किन रानी के तर्कों से संतुष्ट न था, फिर भी विवशता में उसने झांसी की बागडोर संभालने की स्वीकृति दे दी।
0: रानी ने पदारूढ़ होते ही सामरिक तैयारियां आरंभ कर दी। सेना में बिना जातिगत भेदभाव के भर्ती शुरू करवा दी गई और महिला सैन्य दल भी गठित कर दिया गया।
1: उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता अद्भुत थी। समूची झांसी को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने राखी, दशहरा और हल्दी कुकू जैसे त्योहारों को सार्वजनिक रूप दिया। जगह जगह उनके सुशासन और सैन्य संगठन की चर्चा होने लगी। जैन कवि फग्गी दाऊजू ने प्रमुदित होकर कहना शुरू कर दिया,
2: जा झांसी से बनाओ हरि की अति शुद्ध घड़ी बसाई, जो झांसी की लटी तक सुनता है काल का खाई।
0: किंतु परीक्षा की घड़ी सम्मुख थी। ओरछा में उस समय लड़ई रानी का राज्य था, जिसकी गिद्ध दृष्टि झांसी पर थी। उसने अपने दीवान नत्थे खां को झांसी पर आक्रमण के आदेश दिए। झांसी पहुंचने पर नत्थे खां ने रानी को झांसी सौंपने के लिए संदेश भिजवाया।
3: नत्थे खां

0: सजन लगी रानी हरि के छके गए लगी रानी की तो हरि के छके गए
1: इस भीषण युद्ध में रानी एक सशक्त सैन्य नायक के रूप में उभरी। नत्थे खां बुरी तरह पराजित हुआ। रानी की नेतृत्व क्षमता से झांसी की जनता आश्वस्त हुई और स्वयं रानी में आत्मविश्वास का संचार हुआ।
2: इस दौरान रानी की सैन्य तैयारी संबंधी सूचनाएं बुंदेलखंड के ब्रिटिश एजेंट एलिस और सागर जबलपुर संभाग के कमिश्नर के पास पहुंच रही थी।
3: रानी ने नत्थे खां से युद्ध जीतने के बाद जहां अपने सैनिकों को पुरस्कृत किया, वहीं ब्रिटिश अधिकारियों से आर्थिक व सैन्य सहायता भी मांगी। उन्होंने जबलपुर के कमिश्नर को भी पत्र लिखा। जबलपुर के कमिश्नर के मन में जोखनबाग कांड गूंज रहा था। उसने 19 अक्टूबर 1857 को अपने पत्र में कहा कि वो झांसी आकर सभी लोगों की विश्वसनीयता की जांच करेगा।
2: रानी इस बात से उत्तेजित हो उठी। उन्हें लगा कि अंग्रेजों से न्याय मिलना मुश्किल है। इसके बाद गवर्नर जनरल केनिंग ने 11 फरवरी 1858 को सर रॉबर्ट हैमिल्टन को निर्देश दिए।
4: अगर रानी ब्रिटिश फोर्स के हाथ में पड़ता है तो उस पर एक्शन लेने को मांगता, नॉट कोर्ट मार्शल, बट ये एक्शन स्पेशल कमिश्नर के अंडर में करना जरूरी है।
2: रानी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने समस्त सेना नायकों को बुलाकर परामर्श किया और निर्णय लिया कि युद्ध की तैयारियां की जाएं।
3: रानी ने युद्ध की संभावना को देखते हुए पहले से ही नाना साहब, तात्या टोपे, शाहगढ़ के राजा बखत बली, बांदा के नवाब अली बहादुर और बानपुर के राजा मर्दन सिंह से संपर्क बनाए रखा था। रानी द्वारा मर्दन सिंह को लिखा एक पत्र राजा मर्दन सिंह के वंशज श्री कृष्ण प्रताप सिंह जू से प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है।
5: श्री महाराज कुमार, श्री महाराजा धीराज, श्री राजा मर्दन सिंह बहादुर जूदेव, एते श्री महारानी श्री रानी लक्ष्मीबाई जू देवी के बाँचने, आपर अपन के समाचार भले चाहिजे, यहाँ के समाचार भले हैं। आपर अपनी पाती लाला दुलारे लाल के हाथ आई, सो हाल मालूम भाओ। अपन ने लिखी कि फौज की तैयारी में लगे हो तो मन को खुशी भई। हमारी राय है कि विदेशियों का शासन भारत पर ना भाओ चाहिए और हमको अपन को बड़ो भरोसो है और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, सो अंग्रेजन से लड़वो बहुत जरूरी है। पाती समाचार देवे में आवे चैत सुदी साते भौमवार संबत 1914 मुकाम झांसी।
2: ये पत्र रानी की संपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। सैन्य व्यू रचना की दृष्टि से रानी दूरदर्शी थी। उन्होंने किले में अनाज के भंडार लगवा दिए, झांसी के आसपास के तमाम पेड़ कटवा दिए और दीवारें गिरवा दी ताकि अंग्रेज आसानी से हमला न कर सके।
3: ह्यूरोज, सागर, राहतगढ़ तथा गढ़ा कोटा जीतकर जैसे ही नारहट की घाटी से ललितपुर की तरफ बढ़ा, मर्दन सिंह और बखत बली ने उससे भरपूर टक्कर ली, किंतु पर्याप्त सैन्य सामग्री के अभाव में उन्हें हटना पड़ा।
2: 22 मार्च 1858 को हीरोज ने झांसी पर घेरा डाला और 26 मार्च को युद्ध की रणफेरी बज उठी।
0: झांसी घेर लई गोरन ने, चौगिरदा तोपें लगवाए और जो

0: छोड़ाए।
1: गुलाम गौस खां की कड़क बिजली ने अंग्रेजों पर कहर ढा दिया। इसके अलावा प्रसिद्ध तोपें घन गर्जन और भवानी शंकर भी लगातार आग बरसा रही थीं। रानी व्यक्तिगत रूप से घूम घूम कर सैनिकों को निर्देश दे रही थीं।
2: तभी तात्या भी आ पहुंचा, किंतु हीरोज के अचानक आक्रमण से उसकी सेना घबरा उठी। जंगलों में धुआं करता वो लौट गया।
1: इस अप्रत्याशित जीत ने जहां अंग्रेजों को दुगने वेग से हमला करने की शक्ति दी, वहीं झांसी की सेना में निराशा भर दी। किंतु फिर भी रानी घबराई नहीं।
2: युद्ध चलता रहा। मोरोपंत तांबे, लक्ष्मण राव, खुदाबख्श, लालू बख्शी, दोस्त खान, भोलानाथ, जवाहर सिंह, मुशर्रफ और बाला भाऊ जैसे शूरवीर प्राणपण से लड़ रहे थे।
1: साथ ही रानी की सहेलियां और अन्य निवासी गोला बारूद और रसद पहुंचाने का कार्य कर रहे थे।
2: कहा जाता है कि महान तोपची गुलाम गौस खां के साथ उनकी बीवी और पुत्र तथा बहू राहजहां बेगम भी थी। गुलाम गौस खां के शहीद होते ही सैनिकों में अवसाद की काली छाया छा गई। रानी व्यथित हुई। दूल्हाजू के विश्वासघात के बाद ओरछी दरवाजे से अंग्रेज सेना नगर में प्रवेश कर गई। गुलाम गौस खां की बहू राहजहां बेगम उस समय महिला सैन्य दल में थी।
1: बाद में अंग्रेजों ने राहत जहां बेगम की आंखें फोड़ दी थीं। फिर भी वो वीर महिला लगभग 125 वर्षों की लंबी आयु में सन 1957 में दिवंगत हुई। उनके पोते और गुलाम गौस खां के प्रपौत्र आगा गुलाम कादिर खां भोपाल में मोटरसाइकिल सुधारने का काम करते हैं। अपनी दादी राहत जहां बेगम से उन्होंने 1857 के जो किस्से सुने हैं वे जस के तस इतिहास में तो नहीं हैं, किंतु शोध का विषय हो सकते हैं। उन्होंने बताया,
3: उनका नाम तो राहत जहां बेगम था और उन्हें महारानी झांसी गजन रानी के नाम से याद करती थी। वो 1857 की लेडीज सेना की एक कप्तान थी और लेडीज को तलवार वगैरह चलाना सिखाया करती थी और महारानी साहिबा के काफी नजदीक थी।
4: अच्छा, ये 1857 की जो लड़ाई झांसी में हुई थी
3: जी,
4: तो झांसी के किले में
3: जी,
4: ये सारी लड़ाई किस प्रकार से लड़ेगी इसके बारे में कुछ हमने जानकारी दी थी आपको?
3: हाँ, किले में जो लड़ाई हुई है वो किले के बुर्जों के ऊपर से तो तोपें चली
4: जी,
3: और तोपों का अचूक निशाना ग्रेट ग्रैंडफादर गुलाम गौस खान के जरिए से वहां के रिकॉर्ड और हिस्ट्री में है कि महज अगर ये रिलीजियस पॉइंट नहीं होता तो शायद झांसी को फतह करना बड़ा मुश्किल था। अगर अंग्रेज मंदिर के अंदर नहीं घुसते।
4: कौन सा मंदिर?
3: वो जिस मंदिर को बचाने के लिए उससे हट के गोला चला गया है।
4: अच्छा, वो जो किले के बाहर की तरफ।
3: जी हाँ, उस मंदिर के अंदर अंग्रेजों ने काफी तादाद में अपना घेरा कर लिया था और जमाव था उनका, और उन्होंने वहां अपनी तोपें भी फिक्स कर रखी थी। लेकिन यहां से जवाबी गोला जब जाता था तो तोप का मुहाना चेंज हो जाता था, तोप में ही जाके पड़ता था वो। लेकिन क्योंकि अंग्रेज मंदिर के अंदर मौजूद थे इसलिए गोला चलाने से गौस साहब ने इनकार किया कि मंदिर खुदा का घर है और मैं इसके ऊपर गोला नहीं चला सकता।
4: 1857 के बारे में और दादी ने आपको क्या बताया था?
3: बाकी मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जो थी उनकी ये ड्यूटी थी कि वो किसी सूरत से बच्चों की और लेडीज की हिफाजत करें और हिफाजत करते हुए किसी ऐसी जगह पे पहुंचा दें जहां के इनको कोई आंच नहीं आ पाए। लिहाजा उनके रानी साहिबा के एक पत्र और हुक्म के मुताबिक ये सागर खिड़की के जरिए से मैं मेरे दादा और दादी जो है लेडीज का और बच्चों का बैच लेके सागर की तरफ रवाना हुए।
2: रानी 5 जून 1858 की सुबह अपने अफगानी अंगरक्षकों के साथ गणेश दरवाजे से होती हुई कालपी रवाना हुई। लेफ्टिनेंट डॉकर ने पीछा किया किंतु रानी के वार से घायल हुआ।
1: अब क्रांति का केंद्र कालपी हो गया। वहां राव साहब पहले से ही थे और तात्या भी आ गया। तीनों ने मिलकर मंत्रणा की और ह्यूरोज को कौच में ही रोकने का निर्णय लिया।
2: सभी बहादुरी से लड़े। रानी ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शित किया किंतु ह्यूरोज की उत्कृष्ट सैन्य सामग्री और श्रेष्ठ तोपों के आगे एक की न चली। वो कालपी लौट आए।
1: बांदा के नवाब अली बहादुर भी 2000 सैनिकों और कुछ तोपों सहित कालपी आ गए। उन्होंने अंत तक रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। वे रानी को बहुत मानते थे। नवाब अली बहादुर के प्रपौत्र आसिफ अली बहादुर से हमने इंदौर में भेंट की। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना किस्सा इस तरह बयान किया।
0: नवाब अली बहादुर साहब मेरे परदादा थे, जो कि 1857 की जंग आजादी में लड़े थे। रानी झांसी उनके साथ थी और नवाब साहब ने हर तरीके से, क्योंकि रानी झांसी ने नवाब साहब बांदा के राखी बांधी थी और भाई ने बहन का साथ ऐसा दिया कि मरते दम तक साथ रहे।
2: कालपी में क्रांतिकारियों की पुनः हार हुई। वे लौटकर ग्वालियर पहुंचे। तात्या की बुद्धिमत्ता से महाराजा सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों से मिल गई। सिंधिया ने लड़ने की कोशिश की किंतु हारकर भागना पड़ा। ग्वालियर क्रांतिकारियों के हाथ आ गया।
1: रानी तुरंत युद्ध की आवश्यक तैयारियां कर लेना चाहती थीं, किंतु राव साहब, तात्या और नवाब अली बहादुर ने यथेष्ट ध्यान नहीं दिया। उधर ह्यूरोज ग्वालियर के लिए कूच कर चुका था।
2: चारों तरफ से अंग्रेजी सेनाएं ग्वालियर पर उमड़ पड़ी। ब्रिगेडियर स्मिथ चंदेरी से आ पहुंचा। झांसी से भी अनेक अंग्रेज सैनिक पहुंच गए। 16 जून को मुरार पर उनका कब्जा हो गया।
1: राव साहब, तात्या और नवाब अली बहादुर की नींद टूटी, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी को किले के पूर्वी भाग की रक्षा का भार सौंपा गया।
2: रण बांकुरी लक्ष्मीबाई एक बार फिर निर्णायक रण में थी। ये 17 जून 1858 की बात है।
1: अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रानी कोटा की सराय से ग्वालियर की तरफ बढ़ते हुए ब्रिगेडियर स्मिथ के मुकाबले पहुंच गईं। उनके साथ उनकी प्रिय सहेली मुंदर थी। स्मिथ की पैदल टुकड़ी ने रानी पर हमला शुरू किया। रानी घोड़े की लगाम दांतों से थामकर दोनों हाथों से तलवार भांजती रहीं। रानी के इस भयंकर आक्रमण ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए।
2: तभी कैप्टन हैनिच 40-50 हुसार सैनिकों सहित आ पहुंचा। मुंदर एक गोली का शिकार हुई।
1: रानी का घोड़ा मुरार ग्वालियर मार्ग के मोड़ पर सोन रेखा नाले पर अड़ गया। तभी हुसार सैनिक रानी को उच्च सेना नायक समझ गोलियां बरसाते हुए नजदीक आ गए।
2: हुसार सैनिक की गोली रानी के बगल में लगी। एक अन्य हुसार सैनिक ने रानी के सिर पर तलवार का भरपूर वार किया। रानी ने घोड़े से गिरते गिरते आक्रमणकारी पर वार किया। ये 17 जून 1858 की ढलती हुई शाम थी।
1: रानी के अनुचर गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह घायल रानी को उठाकर पास ही गंगादास की कुटी में ले गए। स्वतंत्रता संग्राम में अपना लक्ष्य पूरा कर और राष्ट्र को संघर्ष की दिशा दिखाकर रानी अब अपनी अंतिम श्वासें ले रही थीं। उनके चेहरे पर आभा थी संतोष की।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान पर अभी आप ये विशेष रूपक सुन रहे थे। झांसी की रानी अमर बलिदानी। रूपक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं सर्वश्री सुनील केशव देवधर, राजेंद्र सक्सेना, आनंद वर्मा, जगन्नाथ सुमन, देशराज पटेरिया, ब्रजेंद्र खरे, राजेंद्र वर्मा, अनामिका मिश्र, इंदिरा मिश्र और ज्योति पित्रे। वाचक स्वर श्रीमती ललिता शंकर और श्री सुरेंद्र तिवारी। स्थल ध्वनियंकन श्री इला शंकर गुहा। तकनीकी सहयोग श्री पीसी जैन। संदर्भ सामग्री डॉ भगवान दास गुप्त। ध्वनि संयोजन सर्वश्री

प्रस्तुति थी डॉक्टर लीला धर्मंडलोई की, स्थल ध्वनि अंकन था इला शंकर गुहा का। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्या की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था। आज के दिन नशा मुक्ति के लिए और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल है, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा लोगोरे लोगो, राजा के संग संग झूमलो झूमलो। आया है राजा
2: लोगोरे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो झूमलो।
1: शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ
2: शेर यारो,
1: अरे कोई ना मुझसा
2: दलेर प्यारो।
1: के सच सच कहता हूँ मैं, डट के रहता हूँ मैं। आया है राजा
2: लोगोरे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो।
1: आया है राजा
2: लोगोरे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो झूमलो।
0: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया।

किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण यह है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत

0: गीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, कासूर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहां आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

0: पैलेस।
1: चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलैयाराजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलैयाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलैयाराजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है, और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैया राजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं,

0: संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख है अमित द्विवेदी का, वाचन स्वर है शरद बाघेला के।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी SDM को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहां BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैणन निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नव नियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंद चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनीहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन

0: टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख था अमित द्विवेदी का और वाचन स्वर थे शरद बाघेला के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों का कारवां। इस कार्यक्रम के इस अंक में आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक ज्ञान बुंदेला जी से बातचीत की है जय शेखर ने।
3: नमस्कार श्रोताओं, यादों का कारवां। यादों का कारवां उस बिटारे का नाम है जिसमें होते हैं बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी यादें और बहुत सारे ऐसे किस्से जो यथार्थ में हुए होते हैं। कुछ अजीबोगरीब होते हैं, कुछ गुदगुदाने वाले होते हैं, कुछ मजेदार होते हैं और कुछ गंभीर भी होते हैं। अक्सर यादों के कारवां में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ विशेष व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास किया होता है और उनका जीवन हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर देता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आकाशवाणी सागर से सेवानिवृत्त उप केंद्र निदेशक ज्ञान बुंदेला जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यादों का कारवां।
4: जय शेखर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी श्रोताओं को और खासतौर से अपने बहुत पुराने चिरपत साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
3: बुंदेला सर, आप 2014 में रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए
4: जी।
3: तो सबसे ज्यादा आकाशवाणी की कौन सी याद है जो रोज कहीं ना कहीं आपको आ जाती है, कौन सी बातें याद आती हैं अक्सर आपको?
4: अभी यादें तो बहुत सारी भरी हुई हैं जैसे खर्जी जिगर में, लेकिन हम आपको ये बताना चाहे इस पर खास तौर से आकाशवाणी की ओर से हमारा लगाव बहुत छोट बाल काल से हुआ। हम चौथी कक्षा में पढ़ते थे।
3: अच्छा, अच्छा।
4: हमारे जो विद्यालय है वहाँ के प्रधान अध्यापक एक ट्रांजिस्टर लेके आए थे, बात है 1963 की।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो उस समय एक उत्सुकता बालमन से जाके हम भी रेडियो में होते, तो उसी समय से हमने पढ़ना लिखना तो शुरू किया ही।
3: हाँ।
4: उसके बाद संयोग की बात है हमारी नियुक्ति कृषि विभाग में हो गई थी।
3: हाँ।
4: तो उत्तर प्रदेश में उस समय उत्तराखंड नहीं बना था।
3: हाँ।
4: तो उस समय लगभग ये बात है 76-77 की, तो 6 साल हम एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के रूप में उत्तराखंड में पदस्थ रहे।
3: कौन सी जगह थी वो?
4: ये पौड़ी गढ़वाल, आपने शायद।
3: हाँ बिल्कुल, मैं घूम के भी आया हूँ जी।
4: तो पौड़ी गढ़वाल में भी हम रहे।
3: हाँ।
4: तो एक जगह जो वहाँ राजधानी बनने वाली थी।
3: हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही है आपने।
4: तो 3 साल वहाँ रहे, वो 3 साल पौड़ी गढ़वाल में रहे।
3: हाँ हाँ हाँ।
4: तो उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया आकाशवाणी की ओर से। हमारे एक साथी नजीबाबाद में सिलेक्ट हो गए थे।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो नजीबाबाद पहुंचे।
3: हाँ।
4: तो हमने कहा कि जब ये पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो इसके बाद हमने SSC का फॉर्म भरा।
3: हाँ।
4: और जबलपुर में हमारी फर्स्ट पोस्टिंग हो गई।
3: क्या बात है, जबलपुर में।
4: हाँ, जी जी। ये बात है 1983 की।
3: किस पद पर नियुक्त हुए थे उस वक्त?
4: वहाँ संवाददाता के रूप में।
3: अच्छा अच्छा।
4: कृषि संवाददाता के रूप में हमारी नियुक्त हुई थी। तो उसके बाद 89 में फिर हमारा यहाँ पदोन्नति होके कार्यक्रम अधिकारी के रूप में।
3: हाँ हाँ।
4: हम शहडोल पहुंचे
3: 89 में।
4: 89
3: जी जी।
4: और उसके बाद फिर 2006 में हमारा यहाँ के लिए आकाशवाणी सागर के लिए स्थानांतरण हो गया कृषि कार्यक्रम अधिकारी के रूप में।
3: अच्छा, शहडोल में बहुत वक्त गुजारा आपने।
4: जी, शहडोल में बहुत लंबा कार्यक्रम हमारा, 18 साल का समय आकाशवाणी का वहाँ निकला
3: जी जी।
4: और जबलपुर में तो 6-7 साल का ही निकला।
3: हाँ हाँ।
4: उसके बाद सीधे हम शहडोल से इधर अपने सागर में आ गए थे। उस सागर में फिर हमने अच्छी तबीयत से कार्य किया और बड़ा स्नेह हमें सभी श्रोताओं से, दर्शकों से, सभी से।
3: हाँ,
4: मिला।
3: क्या बात है।
4: और इसके अलावा हमने खास तौर से हमारा कृषि का क्षेत्र ही था तो उसमें हमारा लगाव था विशेष रूप से।
3: हाँ।
4: और ग्रामीण अंचल में हमारी पैदाइश हुई थी, तो ग्रामीण भाइयों से भी हमारा बड़ा लगाव था।
3: जी जी जी।
4: तो यहाँ लगभग करीब 250 गांव का हमने भ्रमण किया, वहाँ आपको मालूम होगा वायुमंडलांकन जो
3: बिल्कुल बिल्कुल
4: रिकॉर्डिंग के
3: जी जी।
4: तो 250 गांव में पहुंच के वहाँ की स्थल रिकॉर्डिंग करके और वहाँ की रिकॉर्डिंग करके यहाँ लाते थे, फिर उसको
3: अच्छा, अच्छा।
4: एडिटिंग करके प्रसारित करते थे। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने खास तौर से सागर क्षेत्र में पाया कि यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ एक दो गायक मंडली नहीं है।
3: क्या बात है।
4: खास तौर से तो हमारा लोक संगीत की ओर और विशेष लगाव बढ़ा। और यहाँ आके हमने फिर आपको मालूम होगा एक कार्यक्रम चलता था यहाँ, फोन करें लोकगीत सुने।
3: हाँ, अभी भी चलता है। जी जी।
4: तो उसमें भी हमने बड़ी रुचि के साथ सहभागिता करते रहे।
3: हाँ।
4: तब से निरंतर फिर आकाशवाणी की वो लगे तो लगे ही रहे।
3: अच्छा सर, आपका जन्म किस जगह पर हुआ था, बाल्यकाल कहाँ बीता, और कुछ अपने माता पिता के बारे में, कुछ अपने पुराने बचपन के दोस्तों के बारे में बताइए।
4: हमारा जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक तहसील है मऊरानीपुर।
3: हाँ हाँ।
4: मऊरानीपुर तहसील में एक गाँव है इटायल।
3: हाँ।
4: तो वहाँ पर हमारा जन्म हुआ था। और उसके बाद वहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी। जूनियर हाई स्कूल हमने वहाँ श्री शंकर विद्यापीठ खंदर का एक जगह है वहीं पास में हमारे।
3: अच्छा,
4: तो
3: अच्छा।
4: वहाँ से हमने 8वीं पास की। उसके बाद फिर हम मऊरानीपुर आ गए थे। तो मऊरानीपुर से हमने 12वीं पास की थी।
3: अच्छा अच्छा।
4: उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन वहाँ से गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से ग्रेजुएशन किया।
3: अच्छा, उत्तराखंड से। उस टाइम उत्तर प्रदेश ही था। बहुत ही अच्छी हसीन जगह है वो, तो
4: बेहतरीन जगह है।
3: कितना वक्त बिताया वहाँ पे आपने?
4: वहाँ 6-7 साल हमारे गुजरे, बड़े बेहतरीन समय निकला हमारा।
3: अरे वाह।
4: लेकिन हमारा चूंकि जन्म काल से ही हमारा शुरुआत से ही रेडियो की ओर विशेष लगाव था।
3: अच्छा, मम्मी पापा के बारे में बताइए आप अपने को।
4: हम वो तो स्वर्गीय हैं। हाँ, दोनों ही।
3: उनकी कुछ यादें हैं आपके साथ?
4: हाँ, अभी यादें तो बहुत सारी यादें हैं। अब माँ बाप का जो स्नेह होता है वो तो उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उनसे तो हमारा शुरू से ही विशेष लगाव रहा है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम अधिकांश समय हमारा बाहर बाहर निकला है।
3: जी, पढ़ाई के लिए भी गए, फिर काम भी आप बाहर करने लगे।
4: जी, तो जो सेवा शुश्रूषा हमें उनकी करनी चाहिए थी उसमें जरूर व्यवधान आया है। और यहाँ तक कि अंतकाल में हम उनके पास नहीं थे।
3: तो इस बात का तो अफसोस
4: बिल्कुल जीवन भर वो अफसोस
3: जी,
4: रहेगा
3: जी।
4: हालांकि उसके बाद पहुंचे तो पहुंचे, क्या अंतर पड़ा।
3: अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं
4: जी
3: कि श्रोताओं से आपका रिश्ता कैसा रहा? बड़ा हमने सुना है कि बहुत ही मजेदार किस्से हैं आपके पास, श्रोता आपसे मिलने भी आते थे, कई बार आप भी श्रोताओं से मिलने चले जाते थे।
4: बिल्कुल।
3: क्या किस्से हैं?
4: श्रोताओं से तो हमारा विशेष लगाव शुरू से ही रहा है। खासतौर से वही बता रहे हैं, हम कम से कम 250 गांव हमने यहाँ से कवर किए हैं। आकाशवाणी के माध्यम से
3: जी
4: वहाँ जाते रहे। और उनकी स्थल रिकॉर्डिंग करते थे
3: जी,
4: फिर यहाँ आके उसको प्रसारण भी करते थे। तो इस तरह
3: जब आपसे श्रोता पहली बार मिलते थे, पहले आपको सुनते रहे रेडियो पे और फिर जब आपसे मिलते रहे, तो वो कैसा उनका प्रतिक्रिया होती थी?
4: क्या बताया जाए। जहाँ पर भी हम पहुंच जाते थे तो एकदम जैसे मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती है इस तरह से।
3: जी जी।
4: वहाँ गाँव का गाँव इकट्ठा पता लग जाए सिर्फ के वो आए हैं।
3: हाँ, बुंदेला जी आए।
4: हाँ, तो पूरा का पूरा गांव जरा देर में इकट्ठा हो जाता था, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
3: अरे वाह।
4: तो जबलपुर में एक मोहनदास समिति है ना, तो वहाँ हमारा सम्मान किया गया था, विशेष रूप से सम्मान हुआ था। यहाँ पर भी अपना जो रविंद्र भवन है ना, यहाँ पर भी हमारा बुंदेली वैभव के अंतर्गत विशेष मतलब सम्मान किया गया।
3: जी जी।
4: साल शरीफ फल और वो सब कुछ।
3: सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष मना रहा है
4: जी,
3: आपके जहन में क्या है वो 90 वर्ष?
4: अब देखिए, समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आया है। शुरुआत में जो उसके प्रति विशेष लगाव था, खैर लगाव तो अभी भी है, लेकिन क्या है, ये टुकड़ों में बट गया है। जी, चैनल हो, ये फलाने ढमके, तो उससे जो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो गया है आदमी। एक ही तो है।
3: अच्छा, कार्यक्रमों को अभी भी आप सुनते हैं क्या आकाशवाणी?
4: कभी कभी सुनता हूँ। अच्छा, जब समय अच्छा। मिल जाता है
3: जी जी,
4: तो मैं निश्चित रूप से सुनता हूँ। और समाचार तो खैर लगभग सुनते ही सुनते हैं।
3: तो आपकी दिनचर्या क्या होती है आजकल?
4: दिनचर्या हम सवेरे जैसे 5-1 बजे जाग जाते हैं। 5 बजे जागने के बाद जैसे उठते हैं
5: तो कम से कम 2 गिलास अच्छा गुनगुना पानी पीते हैं।
3: बिल्कुल।
5: और उसके बाद फिर जैसे फ्रेश रेस होके आए,
3: हाँ,
5: तो आसन प्राणायाम किए,
3: हाँ,
5: थोड़ी एक्सरसाइज किए,
3: हाँ,
5: और ध्यान

0: करते हैं हम आधे घंटे का।
1: अच्छा अच्छा,
0: जो बुद्ध का अनापान स्थिति
1: है, हाँ, हाँ,
0: तो उसको हम आधा घंटा करते हैं
1: जी।
0: और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किए, बस इस तरह से दिनचर्या चल शुरू होती है।
1: परिवार के सदस्यों का कैसा सहयोग मिलता है आपको?
0: परिवार के लोगों का सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। एक बेटा है, वो ई गवर्नेंस मैनेजर है, यहीं पास में रहेली गांव है, अरुण नाम है उसका।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वहां पर उसकी पोस्टिंग है।
1: जी जी जी जी। अच्छा, जब पहली आपको ज्वाइनिंग मिली तो आपने घर वालों को बताया होगा कि हम रेडियो में हो गए हैं
0: जी।
1: तो क्या प्रतिक्रिया थी गांव वालों की और घर वालों की?
0: सब लोग बड़े प्रसन्न थे।
1: हाँ।
0: क्योंकि पहले शुरुआत में लोगों को यह एहसास था,
1: हाँ,
0: बता रहे कि जैसे उसके डिब्बे के अंदर कोई घुसा है वो इस तरह का
1: जी जी जी
0: प्रतिक्रिया हुआ करती थी। तो कुछ लोग बोलते थे, भैया आपको उसमें घुसना पड़ेगा क्या? नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आवाज जाती है उसमें, वो आवाज उसके द्वारा हम सभी को सुनाई देती है।
1: अच्छा, आपने चूंकि कृषि कार्य में, कृषि जगत में बहुत काम किया है और आप एक्सपर्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में भी रहे, तो सागर की कृषि के बारे में क्या कहना है आपका?
0: सागर की कृषि काफी अच्छी है उस हिसाब से, वो अब दिन पर दिन यहाँ पर प्रगति होती ही जा रही है।
1: हाँ।
0: किसान भी काफी अच्छे हैं, प्रगतिशील किसान हैं।
1: हाँ हाँ।
0: और नए नए नवाचार में लगे जा रहे हैं
1: जी।
0: जैसा सुनते हैं, पहले शुरुआत में जैसे फर्टिलाइजर हैं,
1: हाँ,
0: तो इनकी और विशेष उनका ध्यान बढ़ा।
1: हाँ।
0: कि उससे उत्पादन तो बढ़ा,
1: हाँ,
0: लेकिन धीरे धीरे फिर उसका दुष्प्रभाव भी समझ में आने लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आजकल जो जैविक खादें हैं,
1: हाँ,
0: उनकी और उनका ध्यान विशेष जा रहा है।
1: हाँ, हाँ।
0: पहले ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका भी बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगे,
1: अंधाधुंध प्रयोग,
0: अंधाधुंध, जिससे जहां 1 लीटर की जरूरत है वहां 2 लीटर और 3 लीटर।
1: हाँ।
0: तो वो उससे नुकसान, उनका दुष्प्रभाव समझ में आया उनके।
1: हाँ।
0: तो अब उससे थोड़े थोड़े विरक्त हो रहे हैं और मैक्स अधिकतम जैविक के ओर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है।
1: अच्छा, आप जब कृषि कार्य को देखते थे आकाशवाणी सागर में और प्रभार भी संभालते थे
0: जी,
1: तो आपकी किसानों को ज्यादातर सलाह क्या होती थी और क्या परिवर्तन आप चाहते थे, और आपको कहां तक लगता है कि आपके वो परिवर्तन लोगों ने सुने, उन पर गौर किया और उनको आजमाया?
0: उसको बहुत ध्यान से सुनते थे वो उस समय।
1: हाँ।
0: वो फोनन कार्यक्रम होता था।
1: हुँ।
0: तो कृषि संबंधी समस्या हम विशेषज्ञों को बुलाते थे, जैसे अभी आजकल भी बुलाते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उसको अपनाते थे जो बताया जाता।
1: हाँ।
0: जो सलाह दी जाती थी।
1: हाँ, हाँ।
0: और हम विशेष रूप से जो कृषि विभाग थे या जो यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र है।
1: हाँ, हाँ।
0: तो वहाँ के अधिकारियों को बुलाते रहते थे
1: जी।
0: और उनसे रूबरू करवाते थे किसानों को।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता था, उसको बात मानते थे
1: जी। तो अभी आप कृषि कार्य से कुछ जुड़े हुए हैं कि बागवानी करते हैं, यानी किस प्रकार से आप अपने उस विशेषज्ञता का उपयोग कर रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद?
0: अब बात असल में
1: जी,
0: अब यहाँ अपनी खेती किसानी वाली जमीन तो है नहीं।
1: हाँ।
0: तो गमलों में ही थोड़ा बहुत अपना शौक पूरा कर लेते।
1: हाँ,
0: हैं।
1: हाँ।
0: जिसमें अधिकतर जो फूल वाले पौधे हैं, तो फूल वाले पौधे हैं। गमले में हमने एक आम का पौधा भी लगाया है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: नींबू भी लगाया है, गुलाब है।
1: हाँ, हाँ।
0: तो इस तरह से थोड़े बहुत लगाते रहते हैं
1: जी।
0: एक बेल का भी, नीम का भी गमले में लगाया।
1: अच्छा, गमले में। अच्छा अच्छा।
0: तो अब थोड़ा सा मौसम ऊपर छत पर ही उगाते हैं, तो अब चढ़ने उतरने में थोड़ी समस्या आने लगी।
1: हाँ,
0: है। तो उतनी देखभाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी उसी तरह देखभाल चाहते हैं जैसे बच्चों की देखभाल की।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: बल्कि उनसे भी ज्यादा।
1: हाँ।
0: भाई बच्चे तो रोग आके अपना,
1: हाँ, दुखड़ा रो देते हैं, बता देते हैं,
0: लेकिन
1: हाँ,
0: पेड़ पौधे तो बता नहीं सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो तो उनसे बात वही हो सकती है जब उनके पास जाओ, बैठो, सिंचाई करो, तभी उनका दुख दर्द मालूम होता है, वो अपन उनको सही स्वस्थ रख सकते हैं।
1: हाँ। अच्छा सर, आकाशवाणी में आपने बहुत ही लंबी सेवाएं दी
0: जी,
1: तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपने किन किन उद्देश्यों को पाया और कौन से उद्देश्य ऐसे रहे कि आपको लगता था कि और वक्त मिलता तो शायद हम उनको पूरा कर लेते हैं?
0: नहीं, अब उद्देश्य तो कर क्या, अपन तो चाहते थे उत्तरोत्तर अपन प्रगति करें।
1: हाँ।
0: तो हमारे किसान भाई भी,
1: हाँ,
0: उसको देख के कुछ ना कुछ आगे ही बढ़ते जाएं, अधिकतम।
1: हाँ।
0: पैदावार लक्ष्य ये है।
1: हाँ।
0: कि अधिकतम पैदावार ली जाए।
1: हाँ।
0: खेती किसानी का यही लक्ष्य।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अधिकतम पैदावार ली जाए, गुणवत्ता पूर्ण ली जाए, और मतलब कम से कम खर्च में अधिक से अधिक पैदावार ली जाए
1: जी जी।
0: तो ये रहा उसमें अधिक।
1: हाँ।
0: बहुत कुछ सफलताएं भी अर्जित की हैं, लेकिन अब कुछ लकीर के फकीर भी होते हैं।
1: हाँ।
0: तो जो करे हमारे बाप दादे तो ऐसा करते थे।
1: हाँ।
0: तो उसी तरह भी लगे जाते हैं, लेकिन अब तो समय के साथ साथ जब देखते हैं कि हमने

0: इतनी प्रोग्रेस की तो जैसे खर क्यों नहीं कर सकते।
1: हाँ, हाँ।
0: तो वो भी इसी तरह से एक दूसरे को देख के भी ये जो प्रक्रिया होती है विकास की इसी तरह से होती है, एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित
1: हाँ,
0: करता है एक दूसरा।
1: हाँ।
0: बगल के खेत वाला अगर अच्छी पैदावार ले रहा है तो दूसरा जो खेत वाला है वो क्यों नहीं ले,
1: बिल्कुल
0: उसके मन में भी ये उत्सुकता होती है, उससे प्रेरणा एक दूसरे से प्रेरणा लेते
1: हाँ।
0: रहते हैं जी।
1: अच्छा सर, ऐसे कृषकों से क्या कहना चाहेंगे आप जिनकी बहुत ही छोटी जमीन होती है लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो भी संपन्न हो, तो उनको कौन कौन से काम करना चाहिए खेती के अलावा जो सहायक हो उसी चीज में?
0: ऐसी खेती करनी चाहिए जो अपने क्षेत्र के अनुकूल हो,
1: हाँ।
0: अपने आसपास में
1: हाँ।
0: उसकी मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था हो,
1: हाँ।
0: तो तभी वो सक्सेस हो सकते हैं। अब जैसे महंगी से महंगी खेती, आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग जो नए नए जो नई चीजें आ
1: हाँ,
0: रही हैं
1: हाँ।
0: तो लेकिन जितना ऐसा एक कहावत है अपने देहाती कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: तो जितना श्रम किया जाए खेती किसानी के साथ में, जितना श्रम किया जाए अच्छी किस्में लाई जाए उन्नतशील किस्में और अच्छे जैविक खादों का जो परीक्षण होता है, भूमि परीक्षण है, बीज परीक्षण, मिट्टी परीक्षण है, तो इनका सही सही उपयोग करके और अगर अपने उसमें लाते हैं उपयोग में
1: हाँ।
0: तो निश्चित ही उत्पादन बढ़ेगा और खुशहाल होंगे।
1: सर आपसे बातें करने का तो बहुत ही मन है लेकिन वक्त की पाबंदी है, चलते चलते हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
0: आपको शायद मालूम हो हमारी एक बार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी से हमने उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी भेंट वार्ता भी हुई थी, जबलपुर की बात है ये
1: हाँ हाँ।
0: तो उनसे भी हमने एक बार बात की थी, बड़ा अच्छा लगा था।
1: अच्छा,
0: वो तो अंग्रेजी बोलने वाले थे लेकिन हमने उनसे हिंदी बुलवा ली थी।
1: कौन सी चीज उनकी याद है आज भी आपको?
0: तो वो ही बताया था, ये सब चीजें हम बता रहे हैं ना जो कि इस तरह से अगर किया जाए तो अधिकतम पैदावार ली जा सकती है।
1: तो श्रोताओं ये थी एक छोटी सी मुलाकात यादों के कारवां में हमारे आकाशवाणी के पूर्व उपनिदेशक ज्ञान बुंदेला जी से। आप स्टूडियो है सर, आपने हमसे बहुत ही अच्छी यादें शेयर की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय शेखर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने सभी श्रोताओं से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं यथायोग्य सबको, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जय शेखर जी आपको और हमारे सभी श्रोताओं को।
2: यादों का कारवां ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। माहे मुहर्रम के मुकद्दस दिन पर आइए आपको सुनवाते हैं ये काव्य गोष्ठी। आमंत्रित रचनाकार हैं मायूस सागरी, शफीक अनवर, अबरार सागरी।
3: मौजूद सामईन, तो हम साझा संस्कृति एवं विरासत को सलाम करते हैं। इसी सिलसिले में शहीदाने करबला की शहादत को याद करते हैं जिसमें जनाब अब्दुल रज्जाक मायू साहब, अबरार अहमद अबरार साहब और शफीक अनवर ने सीरत हुसैन पर चंद कलाम कलमबंद किए हैं जो आप सभी के सामने पेश खिदमत है। सबसे पहले मैं जनाब अबरार अहमद अबरार साहब को इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूँ कि जा तो गई है तर्ज सदाकत नहीं गई, उन हस्तियों के नाम की शोहरत नहीं गई। जनाब अबरार अहमद अबरार साहब से मुल्तमिश हूँ कि अपना कलाम पेश करें।
4: मुअज्जिज़ सामईन इकराम, हजरत हुसैन पर चंद शेर अर्ज हैं, समाअत फरमाएं।
3: इरशाद।
4: मतला है, जो याद रखना चाहो शहादत हुसैन की, जो याद रखना चाहो शहादत हुसैन की, दिल में बसा के रखो मोहब्बत हुसैन की, दिल में बसा के रखो मोहब्बत हुसैन की। शेर अर्ज है, तलवार के भी साए में सजदा अदा किया, तलवार के भी साए में सजदा अदा किया, ऐसी थी मेरे दोस्त इबादत हुसैन की,
3: बहुत खूब बेशक,
4: ऐसी थी मेरे दोस्त इबादत हुसैन की, अल्लाह की रजा के लिए घर लुटा दिया,
3: बेशक,
4: अल्लाह की रजा के लिए घर लुटा दिया, रखेगा दहर याद सखावत हुसैन की,
3: बहुत,
4: रखेगा दहर याद सखावत हुसैन की। और शेर देखें, दावा तुम्हारा तुम हो हुसैनी तो दोस्तों, दावा तुम्हारा तुम हो हुसैनी तो दोस्तों, लाजिम है तुम पे करना इताअत हुसैन की,
3: बहुत खूब,
4: लाजिम है तुम पे करना इताअत हुसैन की, राहे सिरात पर तुझे चलना पड़ेगा दोस्त,
3: जी
4: राहे सिरात पर तुझे चलना पड़ेगा दोस्त, दिल में अगर है तेरे अकीदत हुसैन की, दिल में अगर है तेरे अकीदत हुसैन की। और ये शेर देखें, फिर उनके जैसा कोई मुजाहिद नहीं हुआ।
3: जी
4: फिर उनके जैसा कोई मुजाहिद नहीं हुआ। मैं क्या करूं बयान सुजात हुसैन की, मैं क्या करूं बयान सुजात हुसैन की। और आखिरी शेर है, तुझको अगर तलब है के जन्नत नसीब हो।
3: जी
4: तुझको अगर तलब है के जन्नत नसीब हो, अबरार दिल में रखना नसीहत हुसैन की, अबरार दिल में रखना नसीहत हुसैन की। जो याद रखना चाहो शहादत हुसैन की, दिल में बसा के रखो मोहब्बत हुसैन की।
3: ये थे अबरार अहमद अबरार साहब। इनके बाद मैं चंद अशार पेश करना चाहता हूँ शहादत हुसैन पर।

0: और इस पूरी शहादत कलमात के बाद बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है जनाब मायूब सागरी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: शहीद अहले करबला की नजर है चार खतात।
0: इरशाद
1: सरवरे कायनात वाकिफ थे।
2: क्या बात।

0: کی. اور آخری شعر
1: ارشاد,
0: ہمارے شہر کے بانوں کے

0: आप अभी जनाब मायूस सागरी साहब के लिए सुन रहे थे, मुखातिब थे उनसे। इस नशिस्त में आप जनाब मायूस सागरी साहब से मुखातिब थे और इसमें जनाब अबरार अहमद अबरार साहब ने भी शिरकत फरमाई और नाचीज शफीक अनवर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माहे मुहर्रम के पावन दिवस पर आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी, जिसमें आमंत्रित रचनाकार थे मायूस सागरी, शफीक अनवर, अबरार सागरी।

0: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: श्रोताओं, कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, अतः 28 जून दिन रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक अवश्य पिलवाएं। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशें फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे श्रोता व्हाट्सएप पर हमें ये फरमाइश भेज चुके हैं और सुनना चाहते हैं ये गीत। फरमाइश हमें भेजी है ग्राम विनय का, तहसील बंडा, जिला सागर से, बलराम सैन, अरविंद सैन, रेखा सैन, रविंद्र सैन, संगीता सैन, महेंद्र सैन, रामदेवी सैन, महेंद्र, सुरेंद्र सैन, नंदिनी सैन, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल, दीप्ति। सदर बाजार सागर से मोहम्मद बशीर मकरानी, आसिफ मकरानी, साजिद मकरानी, इमरान मकरानी, अब्बास मकरानी, ईशान मकरानी, अनवर मकरानी, फराज मकरानी, समीर मकरानी, शबेनूर मकरानी, सावरीन मकरानी, रुबीना मकरानी, तबस्सुम मकरानी, रेहान मकरानी। इसी गीत को पसंद किया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, विवेक रामदास, प्रेम नारायण, शिवा शिवांशु, सुजीत सिरोठिया, रमेश कठौंदिया, अवधेश सक्सेना, यश, प्रमोद सैनी। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले, आदेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाजों को फिल्म देव में। अल्फाज हैं निदा फाजली के, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

देव फिल्म से अभी आपने कव्वाली सुनी और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर दीवार फिल्म से ये कव्वाली। आवाजें हैं विजेता पंडित श्रद्धा पंडित कृष्णा की, अल्फाज हैं नुसरत बद्र के, संगीत आदेश श्रीवास्तव का। फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने यादव कॉलोनी मधुकर शाह वार्ड से लक्ष्मण प्रसाद सेन, हरीश के शर्वानी, परमानंद शर्मा, कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। चंडीगढ़ से सुनना चाहते हैं इस गीत को सतीश अनेजा, बिमल अनेजा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, कीतू, निहारिका, वंश और हार्दिक। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर दीवार फिल्म से ये कव्वाली। आवाजें हैं विजेता पंडित, श्रद्धा पंडित और कृष्णा की।

दीवार फिल्म की इस कव्वाली के साथ ही फरमाइशी फिल्मी नाखूनों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा

0: हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
4: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
3: हाउ आर यू?
5: हैप्पी बर्थडे स्टीफन। थैंक यू।
3: कांग्रेचुलेशंस।
5: थैंक यू डॉन। थैंक यू सो मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
3: ओह फाइन फाइन।
5: थैंक्स फॉर कमिंग। प्लीज कम इन।
4: यस यस।
3: व्हाई नॉट? कम कम। हे
4: कम।
3: यस।

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh!

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
1: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ? सूरज। वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
7: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
7: कि उस अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
6: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
6: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
6: हाँ

0: भी बिल्कुल ठीक।
1: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम सही।
2: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
2: और अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: बिल्कुल,
3: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
3: धीरे धीरे रात घूमते, जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ।
1: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
3: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
2: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है,
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कई
3: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ओह, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
3: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
2: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
3: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी। आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
3: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
3: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
3: डर जाती है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: चंद्र दास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिता रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक

0: वह पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कार्ल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बाली।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलचन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोल थे रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमीं, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफर एक कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो, लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव, वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़, आसमान, जमीन, ओहो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं, और जब छाते हैं बदरा आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए, बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

0: ప్రేమ
1: येसुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और यह खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की यह कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये है हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था। वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मैं और मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर

से लूनावाला खंडाला गए थे, किराए पर बाइसाइकिल लिए और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। उसके अलावा एक और श्रोता है, वो लिख रही है कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं, ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे, और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतज़ार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझी से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती है, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कंफ्यूजन हुआ कि त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था, जब मैं कोचिंग जा रहा था। रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

चावल की आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं। इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज़ की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो हो हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज़्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियाँ एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीगकर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना?

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना। कागज की कश्तियों का वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, उस ऊंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स के बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहाँ स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, है फिर भी एक दूसरे के बंधु।

0: इंसान। सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राण तुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, नीवे विदयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया? कौन लाया?
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
5: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
6: एक टुकड़ा धूप का।
4: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील।

0: मुश्किल आजमी,
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: For our business,
6: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
6: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
5: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान के बोल थे, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सखियो नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों

0: दिल्ली से।
1: शीला जी, क्या हाल चाल है शीला
0: हाँ,
1: जी?
0: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
1: जी, हमारे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं। बताइए, आप क्या करती हैं?
0: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात
0: हाँ
1: बताइए,
0: मैम,
1: दिल्ली
0: काम
1: के क्या
0: करती हूँ।
1: हाल चाल हैं?
0: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
1: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
0: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
1: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
0: हाँ,
1: निकलते वक्त छाता
0: पानी
1: लेके
0: पी
1: चलना।
0: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है वो लस्सी पी लेते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: मैम, नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
1: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, विविध
0: क्या बात है, शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी।
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए बचपन से,

0: विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा।
1: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
0: जी मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ में रहती हूँ।
1: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: जी हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
0: जी
1: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
0: जी
1: योगा करती हैं, योग से जुड़ी
0: जी
1: हुई हैं?
0: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
1: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
0: जी
1: के साथ
0: हाँ,
1: खुशहाल हैं।
0: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप, सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
0: जी
1: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। नमस्कार,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम। मैं
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: तो मतलब बस हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस वक्त बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का। मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
1: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
0: जी मैं श्वेता भारती, जिला इड्डा, ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
1: क्या हाल
0: जी
1: चाल है
0: बढ़िया
1: आपके?
0: है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
1: जी हम भी मजे में हैं और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
0: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
1: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
0: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी
1: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
0: नहीं,
1: सुनने में।
0: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। और रेडियो सुनती हूँ, विविध
1: गाती भी
0: भारती
1: है।
0: बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
1: जी, और गाती भी हैं आप?
0: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
1: तो गुनगुना के बताइए।
0: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
1: सुनाइए।
0: जी के मंदिर में लट से बाहर आई, देवी जी के मंदिर

0: मांगी आई देवी जी के मंदिर में लट सेवा दी आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: सर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए
1: जी, ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ, और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला, उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: मैं हेलो सहेली, हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली जी,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ जी
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी,
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी किसी
1: जी
0: को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जो
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी जी

0: तोबारे दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर आप तो निश्चिंत कीजिए, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत

0: रच बस गया है। योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके बदौलत आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब हम योग करते हैं ना तो हमारा देखा सीखे बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: को।
1: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 28670288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था, रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। ये उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था। हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

0: गुजर जाए।
1: तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड, किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव ही नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया ये सोचकर कि यह तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

तुम हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे, आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी कुछ नहीं हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं
3: समाचारवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। वे कल बेंगलुरु में नाथ प्रभु श्री कैंपेगौड़ा की 517वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को उपयुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं और यह समय होता है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी का। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तो हमारी आज

की पहली जानकारी होगी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। साथियों, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी

व्यक्ति की कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे उसका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग परिवार में तनाव और आर्थिक समस्याएं पैदा करता है। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अवैध तस्करी समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। साथियों, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सही शिक्षा और मार्गदर्शन उन्हें इस बुराई से बचा सकते हैं। साथियों, सरकार और विभिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती हैं। इन प्रयासों से लोगों को नई दिशा मिलती है। साथियों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। सामूहिक प्रयास से इस समस्या को कम किया जा सकता है। खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करती हैं। ये सकारात्मक जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। साथियों, ये दिवस नशा मुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण का संदेश देता है। सभी को मिलकर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और तस्करी का विरोध करना चाहिए। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और जानकारी मुहर्रम विषय पर। साथियों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये त्याग, सत्य और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है। ये नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। साथियों, इस महीने में हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। उन्होंने सत्य के लिए बलिदान दिया था। साथियों, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। लोग इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इससे त्याग की प्रेरणा मिलती है। साथियों, कई स्थानों पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। इनमें इमाम हुसैन के जीवन पर चर्चा की जाती है। साथियों, मुहर्रम हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देता है। ये सत्य और न्याय का संदेश भी देता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। इससे मानवता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ये पर्व धैर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। इससे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथियों, मुहर्रम सभी को शांति और सद्भाव का संदेश देता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। साथियों, मुहर्रम त्याग, सत्य और मानवता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है। ये हमें अच्छे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, ये तो थी एक जानकारी मुहर्रम विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी।
1: रक्तदान को महादान कहा जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता है, इसका एकमात्र स्रोत मानव शरीर ही है। इसके लिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक रक्तदाता ही उसकी सहायता कर सकता है। हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लोगों की दुर्घटना, गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई बार समय पर रक्त न मिलने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी अनजान इंसान के लिए जीवनदाता बन जाता है। रक्तदान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें ना तो धन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी विशेष साधन की। कुछ मिनट देकर हम किसी का जीवन बचाने में योगदान दे सकते हैं। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। मानव शरीर में कुछ समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार किया गया रक्तदान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। रक्तदान हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी किया जाए। रक्तदान करने वाला व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं के ऊपर उठाकर मानवता की सेवा करता है। जब किसी मरीज को रक्त चढ़ाना जाता है, तब यह नहीं देखा जाता है कि रक्तदाता कौन था। वहाँ केवल एक ही पहचान होती है, मानवता। आज के समय में युवाओं की भूमिका रक्तदान के लिए क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक युवा नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। रक्तदान केवल किसी की जान बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा और सेवा की भावनाओं को भी विकसित करता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचाए, तो संतोष और खुशी मिलती है। उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। रक्तदान एक महान कार्य है। यह निस्वार्थ सेवा, मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। रक्तदान महादान है, क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए नया जीवन बना सकता है। एक बूंद रक्त अनेक जीवन का आशा। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। रक्तदान जीवन दान, मानवता की असली पहचान। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। खून का कोई विकल्प नहीं होता है। आपकी नसों किसी और की उम्मीद बन सकती है। आपकी नसें किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, कभी किसी की जिंदगी देकर अमीर बनाई है। जाति और धर्म की दीवार टूट जाती है जब एक का रक्त दूसरों की रगों में दौड़ता है। रक्तदान करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है, शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है और नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे लगभग 650 कैलोरी बर्न होती हैं और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच लाभ मिलता है। रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य और समाज के कई प्रमुख लाभ मिलते हैं। नियमित रक्तदान से खून में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे दिल की बीमारियां और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। एक बार ब्लड डोनेट करने पर 650 कैलोरी तक बर्न होती है। रक्तदान को समाज में महादान कहा जाता है, क्योंकि ये मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। मानव शरीर में रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह तो पूरी तरीके से गलत फहमी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, जिसके दान के दौरान केवल छोटा सा हिस्सा 350 से 400 मिलीलीटर ही लिया जाता है। हमारा शरीर इस खून की भरपाई कुछ ही दिनों में खुद ब खुद कर लेता है। रक्तदान करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे शरीर में नए रक्त कण का निर्माण होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान है सबसे बड़ा उपहार, इससे मिलता है जीवन को नया आधार। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्त किसी जाति, धर्म, लिंग को नहीं देखता है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया खून किसी भी जरूरतमंद की रगों में दौड़कर उसकी जान बचा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हो तो नियमित रूप से रक्त दान करें। हमारा छोटा सा प्रयास यह है कि घर का चिराग बुझने से बचा सकता है और समाज का अनमोल कड़ी की मजबूत कर सकता है। चिकित्सा विज्ञान में आज दुनिया में कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन वह प्रयोगशाला में खून बनाने में अब तक असमर्थ है। प्रगति ने यह व्यवस्था केवल इंसानी शरीर के भीतर ही रखी है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अगर आज अस्पताल में किसी जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीज को खून की आवश्यकता है तो उसकी जान केवल दूसरा इंसान के खून से ही बचाई जा सकती है। यही कारण है रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं बल्कि महादान और जीवन दान का दर्जा दिया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो केवल कुछ मिलीलीटर तरल पदार्थ नहीं ले देते बल्कि किसी निराश परिवार को उम्मीद, किसी बच्चे को उसका माता पिता और किसी माता पिता को उसका बच्चा सौंपते हैं। आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण लोग रक्त दान करने से कतराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे और उनका वजन कम हो जाएगा। विज्ञान और डॉक्टरों के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। एक स्वस्थ के शरीर में लगातार पुराना खून नष्ट होता रहता है और नया खून बनता रहता है। जब हमारे रक्तदान करते हैं तो हमारे बोन मैरो सक्रिय हो जाता है और तेजी से नई स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। दान किए गए रक्त के तरल भाग प्लाज्मा की पूर्ति हमारे शरीर 24 से 48 घंटों में पानी और तरल पदार्थ के माध्यम से कर लेता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार, शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। निशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्तदान करने से पहले हर दाता के खून की कई महत्वपूर्ण जांच जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV आदि बिल्कुल मुफ्त की जाती है जिससे अनजाने में भी सही शरीर की सेहत का पता चल जाता है। रक्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई मजहब, जाति या रंग नहीं होता है। नस में बहने वाला लाल रंग यह कतरा हर इंसान का एक जैसा ही होता है। किसी हिंदू का रक्त किसी मुस्लिम की जान बचा सकता है और किसी अमीर का रक्त किसी गरीब का काम आ सकता है। यह बिना किसी भेदभाव के समाज को आपस में जोड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आपका रक्तदान किसी के चेहरे की मुस्कान। 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। हमें अस्पतालों में खून की कमी के कारण किसी को दम तोड़ते हुए देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रक्तदान को हमें जीवन का एक नियमित हिस्सा और कर्तव्य बनाना चाहिए। आइए संकल्प लेते हैं कि स्वयं भी रक्तदान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पुनीत कार्य के जागरूक करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी के बुझते हुए जीवन के दीपक को दोबारा रोशन कर सकता है। अगर गहराई से सोचा जाए तो ईश्वर ने इंसान को कई अनमोल उपहार दिए हैं जिसमें से जीवन सबसे अनमोल है। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात यह है कि ईश्वर ने इंसान को ऐसी क्षमता दी है जिससे वह दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देखकर दोबारा जीवन का उपहार दे सकता है। इसी क्षमता का नाम है रक्तदान।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अंशिका चतुर्वेदी। तो साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। साथियों, वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे जीवन संभव हो पाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं, वे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। साथियों, वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे जल की उपलब्धता बनी रहती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, इससे भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है। साथियों, वृक्ष अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, वे जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। साथियों, पेड़ गर्मी को कम करके वातावरण को ठंडा रखते हैं, इससे जलवायु संतुलित रहती है। वृक्ष फल फूल लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ती है और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, इससे पर्यावरण आकर्षक बनता है। साथियों, अधिक वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथियों, वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है, ये हमारा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड। पदों की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026 एवं अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। शैक्षणिक योग्यता BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ अब दीजिए अपने मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे।
1: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे।
1: मैं नासिर
2: और मैं साहिबा
1: सामाइन का खैर मकदम करते हैं।
2: सुनते हैं ये गजल लिजा जी की आवाज में। मुलाहिजा फरमाइए।
3: शिकायत एक ऐसी शय है जो इंसानों में खूब पाई जाती है। इंसान को इंसान से शिकायत, इंसान को हालात से शिकायत, इंसान को किस्मत से शिकायत। हद तो यहाँ हो जाती है कि इंसान को कभी कभी खुदा से भी शिकायत हो जाती है, मगर हमें किसी से भी शिकायत नहीं है। क्यों? इस गजल में जवाब मिलेगा आपको। नहीं हमको शिकवे शिकायत किसी से, नहीं हमको शिकवे शिकायत किसी से, के चाहते नहीं हम इनायत किसी से, के चाहते नहीं हम इनायत किसी से, के चाहते नहीं हम इनायत किसी से। हमें है मोहब्बत

किसी से वफा तो करो पर किसी ना किसी से, वफा तो करो पर किसी ना किसी से।

0: से शिकायत ये दिल अब करे क्या किसी से, शिकायत ये दिल अब करे क्या किसी से।
1: वाह बहुत खूब।
0: मिलेंगी जो खुशियां तो बांटेंगे पेश, मिलेंगी जो खुशियां

0: सारा ये किस्सा सुना हो किसी से।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: आपको ये पेशकश पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और अब वक्त का तकाजा है कि हमें चलना होगा। इजाजत दीजिए साहिबा
3: और नासिर को
4: लिजा के
1: लफ्ज और लम्हे।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ गैर फिल्मी कव्वालियाँ और गज़लें। तो कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस्माइल आज़ाद कव्वाल की गाई इस कव्वाली से।

श्रोताओं, कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। अतः 28 जून दिन रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नज़दीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक अवश्य पिलवाएं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता, और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की आवाज़ में ये गज़ल।

का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770443

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता के आखिर में आपको सुनवाते हैं बशीर बद्र का लिखा हुआ कलाम, स्वर है जगजीत सिंह का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नॉर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना

0: फर्स्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब सुना जाए अगला नगमा सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। जयदीप सहानी ने इस गीत को लिखा है, धुन है विशाल शेखर की, फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: गीतकार आनंद बख्शी का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का और फिल्म का नाम है दिल मांगे मोर।

कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और अमित खन्ना की, अमित कुमार की। समीर के बोलों को संगीत से सवारा है आनंद मिलिंद ने और फिल्म का नाम है बागी।

0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम सदाबहार गीत का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात, इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: हर महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम 7:20 पर सुनिए भारत सरकार और GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
1: श्रोताओं, कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, अतः 28 जून दिन रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक अवश्य पिलवाएं। सूचना समाप्त हुई।
0: हर महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम 7:20 पर सुनिए भारत सरकार और GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
1: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदा बहार गीत। और श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है RD बर्मन का।

0: अभी आप सुन रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज शाम 7:20 से आप सुनेंगे GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ। और आइए अब सुन लेते हैं ये संदेश।
1: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
2: हर महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम 7:20 पर सुनिए भारत सरकार और GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
0: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार गीत के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम लोकरंग का। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ विवाह गीत। तो शुरुआत करते हैं सुमन वर्मा की गाई इस गारी से।

0: हर महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम 7:20 पर सुनिए भारत सरकार और GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
1: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम लोक रंग में अब आपको सुनवाते हैं कामता प्रसाद तिवारी की आवाज में ये विवाह गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: हर महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम

0: बजकर 20 मिनट पर सुनिए भारत सरकार और GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
1: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, और आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ विवाह गीत। तो ये आखिरी विवाह गीत आपको सुनवा रहे हैं पूनम देवी और सखियों का गाया हुआ।

पूनम देवी और सखियों के गाए इस विवाह गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। श्रोताओं, आज शाम 7:20 से आप सुनेंगे GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए करते हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है।

0: अब से कुछ ही देर में शाम 7:10 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आज शाम 7:20 से आप सुनेंगे GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ। शाम 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हमरेली करेंगे ग्राम सभा। रात्रि 8 से आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत और रात्रि 8:20 पर होगा गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता। रात्रि 9 से आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम मनचाहे गीत और रात्रि 9:30 से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन सकते हैं। रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। और श्रोताओं, कल की प्रसारण सभा की जानकारी देने से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर GST की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: हर महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम 7:20 पर सुनिए भारत सरकार और GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
0: कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह 6:30 से आप सुन सकते हैं श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। कल इसका 31वां भाग आप सुनेंगे। कुछ पुराने फिल्मी गीत आपको सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के तहत। प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 का। दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 से और कृषि संकेत का प्रसारण समय होगा सुबह 7:05 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत होगा सुबह 7:20 से। गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता आप सुन सकते हैं सुबह 7:45 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा सुबह 8:15 पर और चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 से। चिट्ठी से लोकगीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 से और ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन सकती हैं ग्राम लक्ष्मी सुबह 10:30 से। सुबह 11 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5:02 पर होगा युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कल शाम 5:30 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता और शाम 5:45 पर होगी काव्य गोष्ठी। विषय होगा रस के मेघा बरसे। आमंत्रित कवि हैं वृंदावन राय सरल, शिखर चंद शिखर, पुष्पेंद्र दुबे और मुकेश तिवारी। सदाबहार गीत होंगे शाम 6:30 से और कार्यक्रम लोकरंग का प्रसारण समय होगा शाम 6:45 का। शाम 7:20 पर होगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 9 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत और रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी कल की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की और कल की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण अब हम करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
4: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में 2 दिन निशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा

0: सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मॉनसून और मॉनसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित

0: प्रस्तुत है भारत सरकार एवं जर्मन संस्थान GIZ की वन हेल्थ और एग्रो इकोलॉजी परियोजना अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
1: साथियों, प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ के पिछले एपिसोड में किए गए वादे के अनुसार महीने के आखिरी शुक्रवार यानी आज हम इस कार्यक्रम के एक और नए अंक के साथ आ पहुंचे हैं। यह कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सतीश साहू का नमस्कार। मित्रों, आज इस कार्यक्रम के विषय की बात करते हैं तो आज का विषय हमने चुना है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसको हम संक्षेप में AMR भी कहते हैं। अब बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ की। तो आज के विषय विशेषज्ञ हैं वन हेल्थ और एग्रो इकोलॉजी परियोजना के जिला नोडल अधिकारी और पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर के उप संचालक डॉक्टर नीलेश शाह। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: और अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आज के विषय यानी एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में बताइएगा कि आखिर ये क्या है।
2: वैसे तो एंटीबायोटिक एवं कृमिनाशक दवाइयाँ मनुष्यों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
3: जी।
2: लेकिन इन दवाइयों के असंतुलित एवं अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण जब बैक्टीरिया या परजीवी जैसे सूक्ष्म जीव इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बन जाते हैं तब इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR कहा जाता है। AMR के कारण दवाइयों का असर कम हो जाता है या बिल्कुल ही असर करना बंद कर देती हैं। इससे विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कठिनाई आती है और कई बार ये दवाइयां बिल्कुल ही निष्प्रभावी हो जाती हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मामला गंभीर है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि AMR किन परिस्थितियों में विकसित होता है?
2: इसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। एक तो जब किसी भी दवाई का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं।
3: जी।
2: या जो उसकी डोज होनी चाहिए उस डोज में ना करके उस डोज की अधिकता में या उससे कम में करते हैं।
3: जी।
2: या फिर जितनी अवधि के लिए दवाई का उपयोग होना चाहिए उस अवधि में आप बढ़ोतरी कर लेते हैं या कम कर लेते हैं।
3: जी।
2: इसके कारण से भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है और हम कई बार अपने मन से दवाइयों का उपयोग करने लगते हैं।
3: जी जी।
2: कि जिस दवा की आवश्यकता नहीं है अपने मन से उस दवा का उपयोग करते हैं तो इन परिस्थितियों के कारण एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है। कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, जैसे कि हम दवाइयां पशुओं में देते हैं और पशुओं के दूध और मांस के माध्यम से या पक्षियों के अंडे के माध्यम से इन दवाइयों के अवशेष मनुष्यों के शरीर में भी पहुंच जाते हैं जिसके कारण से इन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होने की संभावना रहती है।
3: जी।
2: एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हम अनुपयोगी दवाइयों को कचड़े में फेंक देते हैं। अब उस कचड़े को अगर पशु खा लेगा तो पशु के दूध में या उसके मांस में उसके अवशेष आ जाते हैं।
3: बिल्कुल।
2: जिसका सेवन अगर मनुष्य करेगा तो फिर दवाई वो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है।
3: जी जी।
2: ऐसे ही जब पशुओं का वेस्ट मटेरियल है जैसे कि गोबर हो गया, यूरिन हो गया, जिसमें दवाइयों के अवशेष रहते हैं, वो जब पानी में जाते हैं या खेतों में जाते हैं तो फिर पानी के स्रोतों के माध्यम से या विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से पुनः हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं कम मात्रा में। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन दवाओं का असर कम हो जाता है और दवाइयां प्रभावी नहीं रहती हैं।
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि AMR एक समस्या क्यों है?
2: अब जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा में बताया कि जो दवाइयां हैं अगर उनका असर कम हो जाएगा तो फिर हमको हायर मेडिसिन में जाना पड़ता है, खासकर एंटीबायोटिक्स में, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो गया तो हमें फिर दूसरी एंटीबायोटिक पे स्विच करना पड़ता है या फिर अधिक मात्रा में दवाइयों को लेना पड़ता है। जैसा कि उदाहरण है कि पहले कई प्रकार की दवाइयां असर करती थी, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, सल्फा ड्रग हैं, चाहे मनुष्यों में हो चाहे पशुओं में हो, ये बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो अब हमको हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ रहा है। फिर अगर एएमआर डेवलप हो गया है तो उस स्थिति में डोज बढ़ाना पड़ता है। तीसरा ये भी समस्या है कि कई बार अगर दो या तीन या अधिक एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो उस स्थिति में उस संक्रमण को नियंत्रित करने में भी बहुत परेशानी होती है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम एएमआर को रोक सकें ताकि उससे जो हमारा उपचार का तरीका है या उपचार की लागत है वो कम होगी और सरल तरीके से हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ बड़ी संख्या में किसान बसते हैं, तो हमारे किसान एएमआर या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, ये जो सावधानियां हैं ये मतलब किसान लेवल की तो हैं ही और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी हैं। अच्छा, और चाहे ये मनुष्यों के लिए आप समझे चाहे पशुओं में दवाइयों के उपयोग के समझे, ये सिद्धांत दोनों पर लागू होते हैं। सबसे पहले तो हमें सावधानी ये बरतना है कि दवा की जब आवश्यकता पड़ रही है जब ही दवा का उपयोग करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी दवा का उपयोग हमको मन से नहीं करना है। तीसरा, डॉक्टर ने जितनी अवधि के लिए दवा लिखी है हमें उतनी ही अवधि के लिए दवा का उपयोग करना है, उसमें मन से ना तो उस अवधि को हम कम करेंगे ना उस अवधि को बढ़ाएंगे। साथ ही अगर डॉक्टर ने जितनी फ्रिक्वेंसी के लिए दवा लिखी है कि एक दिन में अगर दो टेबलेट लिखी है या तीन टेबलेट लिखी है तो उसी तरीके से हमको लेना है, इसमें मन से हमको फेरबदल नहीं करना है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रमाणिक दवाइयों का उपयोग करें, अच्छी कंपनी की दवाइयों का उपयोग करें तथा उनका उचित रखरखाव भी करें। अगर एक्सपायर हो गई हैं तो उनका जो डिस्पोजल है वो व्यवस्थित तरीके से करें और कोशिश ये करें कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम से कम हो। इसके लिए हमें अपने विवेक का उपयोग नहीं करना है लेकिन जो कुछ सावधानियां हैं वो हम बरत सकते हैं कि अगर पशुओं की हम बात करें तो उनके हम जिन जिन बीमारियों का टीकाकरण उपलब्ध है उन बीमारियों का अगर हम टीका लगवाते हैं तो उन बीमारियों के होने की संभावना खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से मनुष्यों में भी डॉक्टर जो परामर्श देते हैं कि इन बीमारियों का टीका लगना चाहिए तो उन बीमारियों का हम अगर टीका लगवाएंगे तो कम से कम वो इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ स्वच्छता का ध्यान रखना है या हमारा जो हाइजीन का ध्यान रखना है ताकि विभिन्न प्रकार के संक्रमण हमारे शरीर में ना फैलें और अगर संक्रमण नियंत्रित रहेंगे तो एंटीबायोटिक्स के ऊपर हमारी निर्भरता भी कम होगी।
1: जी सर बिल्कुल, हमें आशा है कि हमारे सुनने वाले किसानों और बाकी सभी लोगों ने आपके द्वारा बताई गई ये महत्वपूर्ण सावधानियां सुनी होंगी और वो इन्हें अपनाकर एएमआर के नियंत्रण में जरूर सहयोगी बनेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो मित्रों, ये था स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वन हेल्थ रियल वेल्थ। आज इसमें हमारे साथ उपस्थित थे परियोजना के जिला नोडल अधिकारी एवं उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर डॉक्टर नीलेश शाह। साथियों, इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में आपकी प्रतिक्रियाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165875569। हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए NEELESHVET@redmail.com। और साथियों, अगले महीने के आखिरी शुक्रवार को इस कार्यक्रम का एक और नया अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त सतीश साहू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार एवं जर्मन संस्थान GIZ की वन हेल्थ और एग्रो इकोलॉजी परियोजना अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार और GIZ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ FM बैंड पर।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: हमने बात की है योगा एक्सपर्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट और लाभार्थियों से, जिन्होंने हमसे अपने विचार साझा किए। योग गुरु एकता जाधव ने हमें बताया कि किस तरह से बढ़ती उम्र में मेनोपॉज के दौरान महिलाएं योग करके खुद को स्वस्थ रख सकती हैं।
2: हेल्दी एजिंग का मीन्स है कि आपकी बॉडी हर एज में फ्लेक्सिबल हो, मोबाइल हो, वो उठने बैठने के लायक हो, एक्टिव हो, आपको कोई काम करना बर्डन ना लगे, आप हैप्पीनेस के साथ पीसफुली रिलैक्स रहते हुए उस चीज को कर सको। तो यदि आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलती रहती हैं। आप इतने हैप्पी और हेल्दी होते हो, फुली फिजिकली भी और मेंटली भी, तो एजिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। एज आपके चेहरे से भी दिखती है, एज तो आएगी लेकिन आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है योगा करने से, बिकॉज आपका पूरा सिस्टम बहुत क्लीन होता है, पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा होता है, एक एक पार्ट, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है, बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है आपके फेस पर। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि मेनोपॉज के टाइम हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं। योगा करने से हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं काफी हद तक, कार्टिसोल का जो प्रोडक्शन है उसको काफी कम कर सकते हैं, सेरोटोनिन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो उसके थ्रू हम काम रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, हमारा डाइजेशन हम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज मेनोपॉज के टाइम जो बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं तो हम उसके लिए सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू करते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रही होती है। तो यदि हम अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और अच्छा हम योग कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा है, तो वो सारी चीजें बॉडी में अब्सॉर्ब होती हैं और आपको वो समय बहुत इजीली चला जाता है। जैसे जैसे आप एज करेंगे, आपकी बॉडी यदि आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, तो आपको एंग्जाइटी और हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, तो आप हेल्दी एज करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एजिंग में हेल्प करेंगी, डिसीजेस नहीं होंगी। ऐसे सभी आसना जो आपके पेल्विक फ्लोर को काफी स्ट्रॉन्ग करें, ब्लड फ्लो को बढ़ाएं आपके पेल्विक फ्लोर में, वो काफी इफेक्टिव होते हैं। पेल्विक फ्लोर आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, और दूसरी चीज ब्रीदिंग आप जितना ज्यादा करेंगे वो सबसे इफेक्टिव है। यदि आप आसनास नहीं भी कर पा रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वो काफी इफेक्टिव है, आपको मेंटली उस पीरियड को कट करने के लिए, उसको पास करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। फूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना, रिच इन आयरन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस फूड में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है, तो सीड्स का खाना बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन रिच इन फाइबर, फाइबर रिच फूड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: योग करने से लाभ प्राप्त कर रही लाभार्थी महिलाओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। योग से लाभ ले रही किरण पाठक बताती हैं।
3: मैं 63 ईयर ओल्ड हूँ। मैं पूरी लाइफ बाहर कभी नहीं निकली, गृहस्थी में व्यस्त रही, लेकिन 60 क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ योगा आ रही हूँ और मुझे बहुत फायदा है, बहुत, घुटनों में, बॉडी में, सब में मुझे बहुत रिलैक्स है। तब मुझे अब समझ में आया इस उम्र में कि योगा से सब होगा। घुटनों में प्रॉब्लम थी, चलने में सांस फूलना अभी कुछ नहीं है, वेट भी बहुत लॉस हुआ है, करीबन 6-7 किलो। बहुत बेनिफिट है, मेंटल बहुत रिलैक्स है। हाँ, देखते हैं लोग तो प्रभावित होते हैं तो खींचे चले आते। कई महिलाएं मेरे साथ आ रही हैं ये बोल के कि मैं आपकी वीडियो देखी इसलिए आई। घर के अंदर 24 घंटे काम करो, काम कभी खत्म नहीं होता, और फिर रिलैक्स नहीं हो, चिड़चिड़ाहट है, मन खराब है, फिर आए दिन बीमार होने लगी, तो मैं योगा के लिए आई।
1: सनीला कटवा ने हमें बताया कि किस तरह से योग करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है।
4: बहुत ज्यादा फायदा है, मेंटली भी बहुत फायदा है। पहले बहुत ज्यादा, मतलब जैसे जैसे 40s के उसमें आई, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो रहे थे, साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो रही, तो वो सारी चीजें मेरी शॉर्ट आउट हुई। सबसे बड़ी चीज तो बच्चों को टैकल करना, सबसे इजीनेस होने लग गया और एक्टिवनेस कमी नहीं। अब कोई शिकायत नहीं है, ना कमर दर्द, ना पांव का दर्द, कुछ भी नहीं है। एक तो सबसे पहले बात तो पीस, योगा से पीस और एक स्ट्रेंथ बनती है अपनी, और मेंटली हम जब मतलब तैयार होते हैं फेज में जाने के लिए, एक्टिवनेस रहती है, बहुत हेल्दी मतलब अपने आप लगता है। और पहली बात तो गलत खाने की तरफ तो जाते ही नहीं है, पहले क्या भूख लग रही है कुछ भी खाते हैं, पैटी है जो भी है, लेकिन अब हमसे खिलते ही नहीं।
1: लाभार्थी कृतिका चौक से भी योग के द्वारा अपने शरीर में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करती है।
5: तो मुझे योगा से काफी अच्छा लग रहा है,
4: करने के बाद से, ज्वाइन करने के बाद से योगा में मुझे लग रहा है कि जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये सब जो होती है हमारी, तो ये हमें अंदर से स्ट्रांग करती हैं और हमारा जो चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स होते हैं ये काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करता है। तो मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लगा। अगर हम बेसिकली सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि योगा का निचोड़ है, और एग्जैक्टली ये सही बात है कि ये योगा का निचोड़ है सूर्य नमस्कार, बाकी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं।
1: गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा मैथ्यू ने हमें बताया कि हमें कौन से योग मेनोपॉज के दौरान करने चाहिए।
5: मेनोपॉज महिलाओं को जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। इस समय मासिक धर्म बंद हो जाते हैं और शरीर में हार्मोन परिवर्तन होते हैं। इसके कारण गर्मावट महसूस होना, नींद की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना, जोड़ों में दर्द, थकान और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसी समस्या में योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। नियमित योग करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाएं आसान योगा कर सकती हैं, जैसे ताड़ासन। यह आसन शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ को सीधा करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। दूसरा वृक्षासन, यह संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तीसरा योग है भुजंगासन, यह पीठ दर्द कम करते और रीढ़ को लचीला बनाते और तनाव दूर करने में सहायक है। चौथा योग है बुद्ध कोणासन, रक्त संचार बढ़ाते हैं और शरीर को आराम देता है। योग के साथ साथ प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम तनाव कम करते हैं, मन को शांत करते हैं और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि योग हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें। यदि किसी महिला को हृदय रोग, गंभीर गठिया या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं हो तो डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है बल्कि जीवन का एक नया चरण है। नियमित योग, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच के साथ हम इस अवस्था को स्वस्थ, सक्रिय और आनंदमय बना सकते हैं।
1: योगा इंस्ट्रक्टर नीलम राजपूत बता रही हैं कि किस तरह से योग हमारी कई सारी समस्याओं का एक इलाज हो सकते हैं।
6: आज के समय में जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है तो शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विशेष रूप से बढ़ती हुई उम्र के साथ उनके अंदर प्रोटीन, फाइबर, ये सब चीजों की कमी आने के कारण उनका मसल लॉस होता है, मांसपेशियों का एक दर्द शुरू हो जाता है। और अगर दूसरी साइड हम उनकी बोन्स की बात करें तो उनकी जो हड्डियां हैं, कहते हैं ऐसा कि 30 के बाद, 30 साल के बाद कैल्शियम फॉल डाउन होने लगता है, तो कहीं ना कहीं यहीं से हड्डियों वाली समस्या शुरू हो जाती है। इनको तनाव, अनिद्रा, मूड स्विंग, जोड़ों में दर्द, वजन बढ़ना जैसी तमाम समस्याएं होने लगती हैं। प्राकृतिक उपाय है बिना किसी दवाई गोली के योग का सहारा ले तो आसनों में शरीर को लचीलापन देने के लिए एक सामान्य अभ्यास किया जा सकता है, जिसमें कुछ आसन है जैसे ताड़ासन है, ये बॉडी को एक पूरा फुल स्ट्रेस देता है, जो बॉडी में अकड़न और जकड़न होती है ये इसको ठीक कर सकता है और ये खड़े होकर किए जाने वाला आसन। दूसरा है महिलाओं के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, खासतौर से उनका जो मंथली साइकिल होता है और साथ ही साथ जो रोजाना वो काम करते हैं एक ही पोजीशन में होते हैं, थोड़ा तनाव के कारण बॉडी में अकड़न और जकड़न रहती है, उसको कोई 10 आसन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 10 मिनट कर लेते हैं तो उनके जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। दूसरा आसन है सेतु वंदन। आप अगर सुबह सोके जगह हैं ऑन द बेड तो आप वहां पे भी इसको कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता, लेट जाना होता है, घुटने से पैर फोल्ड करके दोनों हथेलियां अपनी जमीन पर या फर्श पे प्रेस करके और हिप्स के ऊपर उठाना रहता है और ये सेतु बंद आसन बनने का काम हो जाता है। मेनोपॉज एक होता है समय पर ये खत्म होता है और एक बहुत जल्दी आने लगा है। अभी हम बात करें तो 35, 40, 45 की एज में महिलाओं को उनका महीना खत्म हो रहा है। हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत तेजी से होता है, यही समय है जब बीमारियां उनके शरीर में परमानेंट प्रवेश कर जाती हैं। इस समय वजन घटता है और बढ़ता है, उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है योग और प्राणायाम। रक्त संचार अगर अच्छा है आपका तो आपको कोई सी भी बीमारी शरीर में आएगी नहीं, मन शांत रहेगा और साथ में इससे आपके सकारात्मक विचार बने रहेंगे। एक होता है बालासन, बच्चों को देखा, बच्चे जब लेते रहते हैं तो अपने हाथ पैर का मूवमेंट करते रहते हैं।

0: ये है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसकी बहुत चर्चा होती है क्यों, क्योंकि ये हमारी हजार नाड़ियों से एक साथ काम करता है। कि कोई रील देख करके, कोई टीवी पे हो रहा है उसको देख के आप कर रहे हो तो ये ना करें, किसी एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर या टीचर के सुपरविजन में 3 महीने यानी 90 दिन आप इसका अभ्यास करेंगे, आप सीख भी जाएंगे और इसके सही करने का तरीका आ जाएगा। तो योग में ये एक बात बहुत फिट है कि आप अच्छे से करोगे तो फायदे मिलेंगे, गलत तरीके से करोगे तो आपको नकारात्मक प्रभाव भी मिलेंगे, योग छोड़ता नहीं।
1: डॉक्टर आभा जैन ने हमें बताया कि किस तरह से हम योग और मेडिटेशन करके अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं।
2: देखिए, आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम सब जी रहे हैं, मतलब हम यानी ज्यादा उम्र वाले ही नहीं, बच्चों को पैदा होते से ही उनके सिर के पास मोबाइल रख दिया जाता है और जैसे ही वो मोबाइल होल्ड करने लायक होते हैं उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो ये बच्चे जो हैं, ये अब किस दुनिया में रहते हैं ये तो अपन सोच ही सकते, ये रियल दुनिया में तो रहते ही नहीं है, ये पूरा मोबाइल पे जो देखते हैं और वो उसकी फास्ट दुनिया, ये उसमें चले जाते हैं और जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उनके गेम्स खत्म हो गए, उनके सोशल जो उनके कॉन्टेक्ट्स थे उनके दोस्त खत्म हो गए और वो किस दुनिया में रहने लगे, मोबाइल की दुनिया में। ये बच्चों के हाल नहीं है, ये जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है और अगर हम जॉब करते हैं तो उस समय हमको टाइम कम मिलता है, इसीलिए हम ये जो मोबाइल की दुनिया में जो है, जो कि एक मेरे हिसाब से तो एक दुनिया जो है जो आपका जीवन ही खराब कर रही है, आपकी बॉडी एज वेल एज आपके माइंड और आपके सोशल सर्कल सबको अफेक्ट कर रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप रिटायर हो जाते हैं, आपके पास अपने लिए टाइम ज्यादा होता है, बच्चे भी चले जाते हैं, वो अपना नीड छोड़ के अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, घर के काम में भी हमको इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो देखिए, सारी तरह की बीमारियां हार्मोनल इंबैलेंस से लेके आपकी बोन वीकनेस से, मसल वीकनेस से, आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो भी इसके कारण कम हो जाती। तो इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, हमको अपने लिए समय निकाल के योगा और मेडिटेशन, ये मतलब मजाक नहीं है और ऐसा नहीं है कि अरे ये तो सब बोलते हैं, ये जहां जाओ तो वो बोलते हैं योगा मेडिटेशन, भाई ये तो रिक्वायरमेंट है और इस समय की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है क्योंकि हम धीरे धीरे करके अपने मूवमेंट्स कम करते जा रहे हैं। तो इस समय अगर हम योगा और मेडिटेशन को अपने जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे खाना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, सोना बड़ा इम्पोर्टेंट है, पर मोबाइल के साथ में तो सोना भी जो है उसका भी कोई भरोसा नहीं कि रात के 12 बज जाते हैं 2 बज जाते हैं, हाँ स्क्रॉल करते रहते हैं और जो बच्चे हैं वो आपको देखा देखी वो भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट एज वेल एज आपका भविष्य ये दोनों खराब। तो सारी फीमेल्स एज वेल एज मेल्स सबको मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले तो ये जो झूठी दुनिया से आप अपनी दुनिया में आइए, कम से कम अगर आप 40 प्लस हो गए हैं तो 40 मिनट तो आपको अपने शरीर और अपने दिमाग के व्यायाम के लिए देना है। शारीरिक व्यायाम के लिए आजकल योगा इंस्ट्रक्टर्स इतने सारे हो गए हैं कि ऑनलाइन ही आपको जो आपका जो प्रिय मोबाइल है उस पे भी आपको योगा इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे जो कि आपको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको योगा करना है। और योगा ऑप्शनल नहीं है कि भाई कभी कर लिया कभी नहीं करा, आपको इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो भी एक समय तो आपके लिए निकल सकता है जब आप ये कर सकते हैं। और योगा के साथ में, योगा के बाद अगर मेडिटेशन कर लिए तो सोने पे सुहागा है, ये आपका बोन हेल्थ ऊपर से नीचे पहुंचता है, आपके ब्रेन का हेल्थ उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे के जाके मेमोरी लॉस होना, अल्जाइमर होना, ये बड़ा कॉमन हो गया है आजकल और ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम अपने दिमाग को उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। शरीर का उपयोग करने के लिए आप सारे योगिक एक्सरसाइजेस करिए तो उससे आपके बोन्स, लिगमेंट्स, आपके मसल्स, आपके हार्ट हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके हार्मोनल हेल्थ, ये सब अच्छी होगी। एक एज के बाद क्या आपके हार्मोन्स खत्म होने लगते हैं जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि आपकी जो बॉडी है उसको एक फेमिनाइन सारा लुक देती है, साथ में आपके सारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और आपके बोन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे 40 के बाद और 50 के बाद तो और भी जरूरी है, कुछ नहीं है तो आप घूमने निकल जाइए पैदल। शुरू में आपको ऐसा लगेगा बड़ा थकान हो रही है, बड़ी बॉडी एक हो रही है, मसल पेन हो रहा है, पर ये 10-15 दिन की बात है, उसके बाद तो आपकी बॉडी को बड़ा अच्छा लगने लगेगा और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि भाई बगैर इसके तो मुझको मजा नहीं आ रही है। तो आप एक्सरसाइजेस के लिए टाइम देना बहुत ही जरूरी है, फिजिकल और मेंटल। मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए आप

0: दिमाग चलाइए, आप थोड़े पजल्स करिए, आप कुछ चीज याद करिए। अगर आप लिखना अच्छा लगता है तो आप लिखिए, आप बुक्स रीड करिए। देखिए, बुक्स रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज कौन कर रहा है आजकल? ओल्ड एज पॉपुलेशन, जो कि अब घर के अंदर ही बंद हो गई है ना, कहीं सोशल सर्कल नहीं रह गया है, बच्चे अपने अपने में बिजी हो गए हैं, तो अब कोई उनको टाइम नहीं दे पा रहा है। भाई बच्चे भी अपने काम में बिजी है तो कितना टाइम देंगे। अब आपको एक अपनी अलग दुनिया बनाना है। अलग दुनिया कैसे बनाएंगे? कि भाई सुबह से आप अपने फ्रेंड से मिलिए, सब लोग मिलके कहीं पे योगा करिए, कहीं एक्सरसाइजेस करिए, साथ में हंसिए, बात करिए, ज्वाइन करिए उनको। आपका डोपामिन सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा, आपका जो कि आपका आपके ब्रेन हेल्थ, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी खुशी के लिए जरूरी है। और आपका जो कॉर्टिजोल हार्मोन है जो कि आपका स्ट्रेस बढ़ाता है, और ये बढ़ने के साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता है और आपके बॉडी के सारे हार्मोन को तोड़फोड़ मचा देता है। तो इसीलिए अब आपको अपने लिए टाइम देना है। टाइम मतलब अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स सब आपके साथ रहे, आपकी बोन हेल्थ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक एज के बाद में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? खड़क हो जाएगी और आप सारे मूवमेंट्स जो है नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज योगा, योगा इंस्ट्रक्टर से सीखिए, मोबाइल पे सीखना उस पे सीखे, बाहर जाके सीखेंगे तो लोगों का साथ भी मिलेगा, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
1: तो हमने जाना, बढ़ती उम्र में योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक बेहतरीन साधन है, बल्कि ये मानसिक शांति, जोड़ों के दर्द में राहत और संतुलन सुधारने में भी अत्यंत लाभकारी है। इसे किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और बढ़ती उम्र की सभी समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है।
2: बढ़ती उम्र में महिलाओं के लिए योग का महत्व विषय पे आप जा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे थे, और रिकॉर्डिंग सहयोग तो पूनम सरावगी को, कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा को थो। भैया अब बारी है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों की। पहला गीत हम आपको सुनवाए देते हैं फिल्म प्यासा सावन से, और गाँव है लता मंगेशकर ने, और जा गीत के लाने पसंद करो है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और ऋषिका रोबिन ने। सुना थे इनकी पसंद को जो गीत, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत के अंतर्गत।

भैया आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत को जो अगलो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इखो पसंद करो है रामचंद्र माखीजा काफिर शंकरलाल माखीजा राहुल कुमार माखीजा श्रीमती सबिता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार ने बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से जो पत्र है अब हम जो अगलो गीत इनकी पसंद पे सुनवा रहे हैं वो है गाव है श्रिया घोषाल ने और फिल्म है बरसोरे मेघा।

0: क्या बात है भैया, आप लोगों ने बड़े अच्छे गीत पसंद करे थे। हमारे सभी श्रोताओं के लाने भी जरूर पसंद आए हुई हैं। आप भी ऐसे पसंद के गीत सुनवा चाह रहे हैं तो हमें पत्र लिखें, ग्राम सभा कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। अब दो आज्ञा मनोज भैया को स्वीकार करो, दो ही हाथ जुड़ेगी। राम राम। अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं रॉक स्टार फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की। इसको लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत

रॉक स्टार फिल्म से अभी आपने ये कव्वाली सुनी, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिज़ा फिल्म की ये कव्वाली। आवाज़ें हैं कादर गुलाम मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा गुलाम मुस्तफ़ा, एआर रहमान और श्रीनिवास की। इसको लिखा है शौकत अली ने और संगीत है एआर रहमान का।

फिजा फिल्म से अभी आपने ये कव्वाली सुनी। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की ये आखिरी कव्वाली आपको सुनवा रहे हैं बडाली ब्रदर्स की गाई हुई। फिल्म है तनु वेड्स मनु और इसको लिखा है राजशेखर ने और संगीत है कृष्णा का।

बडाली ब्रदर्स की गाई इस कव्वाली के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अनूप जलोटा की गाई इस गजल से। कलाम है फैयाज अहमद का।

0: पंकज उदास की आवाज़ में अभी आपने जफर गोरखपुरी का कलाम सुना। श्रोताओं, कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। अतः 28 जून दिन रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नज़दीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक अवश्य पिलवाएं। सूचना समाप्त हुई।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता की ये आखिरी पेशकश आपको सुनवा रहे हैं फरीदा खानम की आवाज़ में।

0: फरीदा खानम की गाई इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
0: News on AIR। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब हम रैली करेंगे समाचार संध्या।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग।
5: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं। श्रोताओं, समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। इस कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, ये आवाज़ है शब्बीर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आरडी बर्मन का। फिल्म है बेताब। इस गीत को सुनने की ख्वाहिश हम इन सभी श्रोताओं ने हमसे की है। टोरो बाल नवाशहर पंजाब से लिखने वाले हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम बेबी बामिका और वाणी थांदी ने। सौगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से ये वर्ष फरमाइश आई है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हियांश कुमार चंदन ने। मरहटा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम और यशफ अब्बासी की फरमाइश हम तक पहुंची है। सिकंदरा राव से मुवीन अब्बासी और इशरत परवीन। सदर बाजार कुराबली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए, आप सभी की फरमाइश पर हम सभी सुन रहे हैं बेताब फिल्म का ये गीत। आवाज़ है शब्बीर कुमार की।

प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल और प्यारे बेटे चटकू मटकू, बटिंडा रोड मणि डब्वाली से ये फरमाइश भेजी है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग और तानिया नारंग ने। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, भाई माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। और ये पत्र है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और समस्त परिवार का पत्र हम तक पहुंचा है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कारवां फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। श्रोताओं, कार्यालय कलेक्टर सागर से प्राप्त एक सूचना सुनिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, अतः 28 जून दिन रविवार को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक अवश्य पिलवाएं। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, कार्यक्रम मनचाहे गीत की ये अगली फरमाइश आई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू प्रियांश और भाव्या देवांगन। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे श्रोतागण हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। बघेरा दुर्ग से इसी गीत को पसंद किया है संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म है अवतार।

अवतार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। और आइए अब आप श्रोताओं को सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की। गीत को लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है OP नैयर ने। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं चर डोंगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहित्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और PB कुलथे। मुंगी पैठड़ महाराष्ट्र से श्रोतागण हैं बाबा साहेब कंगणकर, परमेश्वरी, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और समस्त कंगणकर परिवार। ग्राम पाहरा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछूर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछूर। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किस्मत फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, अब हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश पर, जो है फिल्म लैला मजनू का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है मदन मोहन का। इस गीत को हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है। ग्राम बिनेका, तहसील बंडा, जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद्र सेन, संगीता सेन, महेंद्र सेन, रामदेवी सेन, सुरेंद्र सेन, नंदिनी सेन, रिया, गौरव राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति ने। राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार की फरमाइश हम तक पहुंची है। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। किवले गांव पुणे से अंकिता कांबले सैदापुरकर, विजय कांबले सैदापुरकर, बेबी शौर्या और श्रेयांश कांबले की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

लैला मजनू फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूमलो झूमलो। आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो झूमलो।
1: शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ
2: शेर यारो,
1: अरे कोई ना मुझसा
2: दलेर प्यारो।
1: के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं। आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो झूमलो।
1: आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो झूमलो।
0: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो बना

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया।

मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1980

0: 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

क्योंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने

चलिए राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

क्योंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलैयाराजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलैयाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा।

इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बना।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मोल भाव न कोई नाप तौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है, हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गवाया है। जितना दिया पास से अपने, लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया की भीड़ में मिला है एक हम कदम। तू मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला ले कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में, संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए।

इस दिल का क्या भरोसा, तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें, जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: गुड नाइट।
3: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
3: अच्छा गुड नाइट।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एक गीत आपको सुनवाते हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना, मन्ना डे का स्वर, संगीत अनिल विश्वास का।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।